0: मोबाइल चार्ज पे लगा दो, उसके बाद मैं सो जाओ।
1: बिल्कुल, और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो गर्म वेव्स, जो हीट निकलती है, वो कानों में अंदर हमें नुकसान दे जाती है कई बार।
0: जैसे तो आजकल आदमी गाड़ी भी चला रहा है तो हेडफोन लगा कर चला रहा है।
1: कितनी गलत बात
0: है। जैसे गाड़ी पे कम फोन पे ज्यादा जाते तो एक्सीडेंट इसी समय हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: बताइए अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वड़ीले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी देवीदास जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हूँ मैडम जी। और रिमझिम रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है।
0: तो ये जो बरसात की बूंदे है,
1: हाँ
0: इसकी आवाज आपके कानों को क्या कहती है, कुछ हमें
1: जी मैडम
0: बताएंगे?
1: जी, अभी पानी आ रहा है, रिमझिम बरसात अच्छी बढ़िया हो रही है और बरसात का मजा ले रहे हैं मैडम जी।
0: ले रहे हैं तो
1: और
0: इसकी
1: बेटे बेटे आपके जो रेडियो से जो गाने आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं।
0: सुन रहे हैं जी। तो ये जो बरसात की
1: जी
0: रिमझिम आवाज है, ये कानों को सुकून दे रही है आपको,
1: हाँ दे रहे ना मैडम जी।
0: दे रही है। और जब यही आवाज बादलों की गरज के रूप में जब आपके सामने आपके कानों में पड़ती है, तब कैसा लगता है आपको?
1: अरे बढ़िया लगता है मैडम जी एकदम। अपने ये बरसात का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, लेकिन
1: हाँ
0: उस गरज से, बादल की गरज से आपको ऐसा नहीं लगता है कि कानों पर कुछ प्रभाव होता है, अच्छा
1: हाँ
0: बुरा?
1: जी सब मैडम जी, जो ज्यादा जब एकदम तेज बिजली कड़कती है जब कुछ असर होता है।
0: देवीदास जी, आज हमारा विषय भी यही है कि जब तेज आवाज हम सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं।
1: मैडम ज्यादा तेज आवाज आए तो अपने वो सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ जो आता है ध्वनि प्रवाह से थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। और थोड़ा जो अपने जो कान में जो है थोड़ा बहुत कैसा जो रुई के तार है थोड़ा बहुत सावधानी वापरना चाहिए मैडम।
0: बिल्कुल। तो जब बादलों की तेज गरज जब होती है, तब भी ये होना चाहिए कि हमें अपने कानों को थोड़ा सा सहारा दे देना चाहिए हाथ रखकर, ताकि तेज
1: हाँ
0: आवाज प्रभावित न करें,
1: जी मैडम
0: है
1: जी,
0: ना? और
1: अपन जितनी सावधानी बरतेंगे।
0: आपने बताया कि आप इसके साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, तो कहीं बारिश की आवाज में आपने रेडियो की आवाज तेज तो नहीं कर दी है?
1: नहीं मैडम जी, जो पहले जो रेडियो चलते थे दिन कर के उसमें जो खरखर की आवाज आती थी मैडम जी, जैसे बिजली का आवाज जो कड़कती थी तो उसमें रेडियो की बहुत मतलब एकदम मिस्टी बताता है
0: जी
1: जो बिजली की आवाज वो रेडियो में कड़कती थी। और अभी जो परिवर्तन हुआ है मैडम जी, जो मतलब परिवर्तन जो हुआ है तो बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हम अभी जो डीटीएच से सुनते हैं मैडम जी,
0: मोबाइल पर सुनते हैं आप रेडियो,
1: हाँ
0: तो
1: मोबाइल पे
0: ईयरफोन।
1: भी सुनते हो, जो डीटीएच मैंने लगा रखा है ठीक थी
0: तो
1: मैडम जी।
0: ये बताइए कि जब आप मोबाइल पे रेडियो सुनते हैं, तो उसे ईयरफोन पे हेडफोन लगाकर, ये ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगाकर सुनते हैं या नॉर्मल आवाज में सुनते हैं मोबाइल पर
1: नहीं
0: रेडियो?
1: मैडम जी, मैं मोबाइल से नहीं सुनता मैडम जी, वो जो डीटीएच लगा कर रखा है मैंने, हाँ वो जो दो डीजे मैंने बना कर रखा है उसमें सुनता मैडम जी, बहुत मजा आता है और बहुत एकदम साफ सुथरा आता है।
0: साफ सुथरा आता है ना, बिल्कुल। तो ऐसी
1: हाँ
0: ही धीमी आवाज में और सुरक्षित माहौल में हमें अच्छा गीत संगीत सुनना
1: जी
0: चाहिए।
1: मैडम जी,
0: धन्यवाद देवीदास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
1: हाँ
0: करके।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे।
1: नमस्ते। हीरू
0: कौन बात कर रहे हैं? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: पड़ियार,
0: जी जी बिल्कुल। आप पास जो शोर हो रहा है उससे आपको परेशानी नहीं हो रही है क्या? आपके आसपास बच्चे बात कर रहे हैं खेल

0: कूद रहे हैं,
1: हाँ
0: तो आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है क्या उनकी आवाजों से, इतनी तेज आवाज से?
1: हाँ थोड़ी कम कम आ रहे आवाज।
0: हाँ, और पीछे से देखो रेडियो की भी आवाज हमें आने लगी, तेज हो गया रेडियो।
1: हाँ
0: तो इसके क्या नुकसान है जब ये तेज आवाज में हम सुनते हैं, तो ये बताइए। तो जब हम बारिश की आवाज के साथ में जब रेडियो आप सुनते हो, तो रेडियो की आवाज आपको बढ़ानी पड़ जाती होगी ना,
1: हाँ मैम,
0: तो फिर ये कानों को नुकसान नहीं देती है आपको क्या?
1: इसे मतलब हम ज्यादा नहीं सुनते हैं इसमें।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: और ये जो आसपास गीत संगीत कई बार डीजे में बजता है शादी में पार्टी में, तो उसको उससे कभी आपको कोई परेशानी हुई है?
1: हाँ जी मैम, ज्यादा ये डीजे वगैरह सब चलता है तो इसे ज्यादा अपन के ऐसे धड़क धड़क करता है, तो हम तो दूर ही रहते हैं इससे, मतलब पास पास में नहीं जाते।
0: और जब बच्चे घर
1: हाँ
0: के आंगन के बाहर खेलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, तब आप क्या करते हैं?
1: हाँ वो उनको डांट देते हैं, परेशान
0: डांट देते हैं?
1: करते हैं तो
0: क्यों
1: डांट
0: क्यों डांट देते हैं
1: देते हैं, लड़ देते हैं कि जोर से मत चिल्ला चोट करो, धीरे धीरे खेलो करके।
0: बिल्कुल, ताकि क्या है कि बच्चे जब चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं तो उनका गला भी खराब होता है,
1: हाँ पर
0: उनकी
1: वो
0: आवाज,
1: समझते नहीं मैम।
0: हाँ जी, उनकी आवाज भी खराब होती है, और दूसरा जब वो चिल्लाते हैं तो दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि घर में हम आराम कर रहे होते हैं या हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है।
1: हाँ तो ऐसे कहने जाते हैं मैम, तो फिर उनको माँ बाप अपन को फिर चिल्ला चोट करते, इनके बच्चे उनको नहीं मतलब अक्ल देते। हाँ
0: बराबर है, तो आप बिल्कुल
1: अपन सही बात बोलते तो उनको बुरा लगता है।
0: बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं कि तेज आवाज के क्या फायदे या क्या नुकसान हैं। तो बातों बातों में
1: सही।
0: आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

श्रोताओं, आज के विषय पर आपसे बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जितना हो सके हाई रेंज में गीत संगीत सुनने से बचें।

आजकल शादी पार्टी में बजने वाला डीजे का गीत संगीत हमारे कान के पर्दों को अंदर तक हिला देते हैं। कई बार टीवी देखते समय, रेडियो सुनते समय तेज आवाज हमारी श्रवण क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे, गाड़ी चला रहे हैं तो कानों में ईयरफोन, हेडफोन आजकल आम तौर पर चलन में देखा जा रहा है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर आंगन में गूंजती किलकारी की खुशी आप महसूस न कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की तरक्की उनकी मुंह जबानी सुनकर आप अपनी आंखों में खुशियों का पानी न भर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कम सुन पाने या ना सुन पाने की वजह से अपने जीवन की अनमोल खुशी से आप वंचित रह जाएं।

अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल का रिश्ता। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। इन्हीं के साथ हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। अगले श्रोता बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, खुशी, शरद और पूजा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का 8वां भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: दोस्त मिले?
2: हाँ जी बोलिए।
1: एक बात बताओ।
2: जी जी।
1: अभी 4-5 दिन पहले मैं सूट पहन के,
2: अच्छा
1: बढ़िया टाई सूट नया और जूते में पॉलिश वगैरह, ऐसा सब बढ़िया टिप टॉप बन के सब्जी बाजार गया।
2: सब्जी बाजार?
1: हाँ, अच्छा। आलू लेना था, भट्टा लेना था और वगैरह वगैरह धनिया मिर्ची वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं, आलू महंगा मिला, भट्टा महंगा, गोभी महंगी, हरी धनिया मिर्चियां, जितनी भी सब्जी मैंने खरीदी सब महंगी मिली, सब महंगी। हाँ, और जब 2 दिन के बाद सूट मैंने नहीं पहना, मैंने क्या किया, एक पुराना सा मेला कुर्ता था मेरे पास, फटा पैजामा था,
2: क्या बात है,
1: एक रद्दी वाली स्लीपर थी, उसको पहन के मैं सब्जी लेने गया। अरे भैया, आलू सस्ता, भिंडी सस्ती, गोभी सस्ती, ये हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग

0: सूट जो पहन के आते हैं उनको महंगा क्यों देते हैं? हाँ यार, हमको महंगा दिया, और जब हम आपका कुर्ता फटा वाला पैजामा वगैरह पहन के गए तो हमको सस्ता दिया यार उन्होंने,
1: सस्ता दिया। हाँ, ये तो कपड़ों का असर लगता है हमको भैया, ऐसा लगता है कि सूट के कारण आपको महंगा दिया हाँ? और फटे कुर्ते के कारण आपको सस्ता कर दिया हाँ? औकात देख के हाँ? अब आप तो एक काम कीजिए,
0: बोलिए,
1: कटोरा लेके चले जाते तो सब्जी फ्री में मिल जाती। एक साहब शौकीन तबीयत के थे, हमेशा अच्छा खाना और अच्छे पहनने पर ज्यादा विश्वास रखते थे, और शौकीन तबीयत के होने के कारण कभी कभार ड्रिंक वगैरह का भी शौक करते थे, और काफी इस तरह के शौक पालते पालते चार दोस्त और यारों के बीच में काफी प्रसिद्धि पा गए कि साहब फला और अमुक व्यक्ति तो इतने ज्यादा शौकीन हैं कि इनके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु ला के रख दी जाए और इनकी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो ये बिना देखे सिर्फ सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है, एक बार उनकी परीक्षा ली जाती है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है, उनके सामने एक कप प्याली ला चाय की रखी जाती है, अब बोला जाता है कि साहब बताइए क्या है, आप फौरन सूंघ के बताते हैं साहब ये चाय है, दूसरे सेकंड में उनके सामने कॉफ़ी का प्याला आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, बोले साहब ये कॉफ़ी है, तीसरे सेकंड में उनके पास टमाटर सूप का एक मग आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, आप आंख में पट्टी बांधे लगातार सूंघ के बताते जा रहे हैं, बोले साहब ये टमाटर सूप है, उसके बाद एक ड्रिंक का पैग उनके सामने लाया जाता है ग्लास में भर के, बोले साहब ये क्या है, आप फौरन कोई ऐसा नाम बता देते, बोले साहब ये हेड वाइपर है, ये ब्रोक राइटर है, ये रूम साइटर है, ये जूनिक बॉक्स है, बोले साहब ये तो हर टाइप का ब्रांड पहचानते हैं, एक ग्लास में खाली पानी भर के इनको दे दिया, बोले साहब बताइए ये कौन सा ब्रांड है, अब पानी को जैसे ही सूंघते हैं उसको दोबारा सूंघने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके बाद ग्लास रख देते हैं और फौरन बोलते हैं साहब ब्रांड जरूर नया है लेकिन मार्केट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गीत और संगीत के बहुत सारे जोक्स और ऑब्जर्वेशंस आपने सुने होंगे, मैं एक ऐसा म्यूजिकल आइटम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था और हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहा था तो टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता था, लेकिन कुछ भजनों और गीतों को क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और इसके लिए वो कई गीतों को पसंद किया और उन गीतों को वो अपनी भाषा में कुछ अंग्रेजी का समावेश करके कुछ हिंदी के शब्दों का चयन करके आप तक पहुंचाया करता और जो उसको पसंद था तो वो लोगों को सुनाया करता और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते, वही कुछ बातें हमने भी सुनी आपकी प्रस्तुत आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले अंग्रेज एक भजन प्रस्तुत कर रहा है, मैं आपको वो ओरिजिनल भजन सुनाने जा रहा हूँ, वो भजन कैसा है और उसके बाद उसकी दो लाइनों के बाद वो अंग्रेज अपने अंग्रेजी शब्दों के समावेश के साथ उस भजन को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, दोनों बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

और इस सुंदर से भजन को अंग्रेज महोदय ने जिस समय गाना शुरू किया तो अपने शब्दों के समावेश के साथ वो किस तरह गा रहे हैं, देखिए उनका अंदाज कुछ और है और वो उस तरह के भजन को अपने अंदाज में किस तरह सुना रहे हैं, एक बार फिर से

अंग्रेज साहब से जब बोला गया कि आप इस तरह भजन तो हमको आपका बहुत पसंद आया है, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई गीत सुना सकते हो तो साहब हमें बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज साहब ने किसी हिंदी फिल्म के गीत को सुनाने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ अपने शब्दों का समावेश किया। तो देखिए, हिंदी फिल्म का किसी हिंदी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जो शायद आ चुका हो या आने वाला हो, आपकी नज़र कर रहे हैं अंग्रेज साहब, तो

0: किया
1: और अंग्रेज ने इस गीत को कैसे आप सभी के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये अंदाज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेज इसी गीत को कैसे प्रस्तुत करेगा, अंग्रेज अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
2: माहौल शादी का हमारे पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होता आ रहा है और विगत हजारों सैकड़ों हजारों साल से होता आ रहा है ये माहौल शादी का। जब शादी के माहौल की हम एक जब शुरुआत करते हैं, लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है, लड़का आता है, लड़की को देखता है और फिर सगाई होती है, लगुन भेजी जाती है।

जाती है, फिर शादी के और भी बहुत सारी रस्म पूरी होती हैं, तो इस सब माहौल को देख के बड़ा आनंद आता है। अब विश्वास करिए कि जब कभी भी आप किसी की शादी में जाते हैं मेहमान बन के उसके निमंत्रण पर, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अपनी शादी की बात ज़रूर याद आती होगी। जो कुंवारे हैं उनको तो खैर नहीं आती, क्योंकि वो तो खैर बेचारे सपने देखते रहते हैं कि काश हमारी शादी होती, न जाने कब हमारी शादी होगी। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरे की शादी देख के अपनी शादी की ज़रूर कहानी याद आती है। तो कुछ इसी तरह की बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी कल ही मैं एक की शादी में गया था। बड़ा बढ़िया खाना पीना बना था, दूल्हे राजा बैठे थे, दुल्हन साहिबा आई, बहुत आनंद आनंद हुआ, गाना बजाना भी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मेरी अपनी शादी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, वो परेशानी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, परंतु आप सभी से ये निवेदन है कि आप किसी को बताएं ना कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी हुई है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम आकाशवाणी के हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन हमारी बात आप किसी को बताइएगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं सुना रहा हूँ अपनी शादी की कहानी। हमारी बारात चली जबलपुर शहर से, चलती गई चलती गई चलती गई गुजरात पहुंची। जब गुजरात हमारी बारात पहुंची तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे ससुर को यानी होने वाले ससुर को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी थी कि मेरा लड़का जो दूल्हा बन के आ रहा है वो कार में नहीं बैठेगा, जीप में नहीं बैठेगा, ना तांगे घोड़े पे बैठेगा, वो सिंगल घोड़े पे जरूर बैठेगा, इसलिए घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब बड़े सीधे साधे थोड़ा पहलवान हैं, उनकी वजह से तो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, उनकी बालकनी लोग कहते हैं कि खाली है। तो ठीक है साहब, कहानी आगे हमारी शादी की बढ़ती है। घोड़े का इंतजाम किया गया, वो घोड़ा किसी के घर का नहीं था, सर्कस का घोड़ा था। अब सर्कस का घोड़ा दूल्हे के लिए बुलवाया गया। हम जैसे ही उस घोड़े पे बैठे, बैंड बाजे बजे, तो बैंड जब बजते थे तो वो घोड़ा नाचने लगता था, और जब वो नाचे तो हम गिर पड़े। अब बताइए, दूल्हा अगर घोड़े से गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा। हम तो 5 बार गिरे और 5 बार फिर उठ गए, फिर बैठ गए। चलिए ठीक है साहब, कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है, कोई आरती लिए है। तो पहले वहाँ का दृश्य जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बैंड बाजे की आवाज़ बड़ी दूर से सुनाई दे रही है।

बारात चली आ रही थी, मेरी बारात चली आ रही थी, मैं तो दूल्हा बना हुआ था, वो किराए के घोड़े पर बैठा था और भगवान को बार बार याद कर रहा था कि हे भगवान ये घोड़ा अब ना नाचे, और अगर ये नाचा तो मैं गिरा और दूल्हा बन के फिर से एक बार गिरूंगा तो कितना बुरा लगेगा। धीरे धीरे धीरे धीरे चली आ रही है बारात, ये कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची। कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, कहा आइए साहब आइए, आइए साहब आइए, आपका स्वागत है साहब, आइए आइए, अरे कुर्सियां लाओ भाई कुर्सियां लाओ, अरे कुर्सियां लगाओ भाई साहब, है कुर्सी नहीं आई क्या, तो किसी का टेबल कुर्सी को छोड़ तखत तखत कुछ बुलवा लो भाई, अरे चादर वादर कुछ बोरा वोरा बिछा दो भाई जल्दी, आइए साहब आइए आइए आइए, अरे फूल माला लाओ, हाँ गुलाब जल लाओ गुलाब जल लाओ, आइए साहब आइए आइए, आइए साहब आइए, गुलाब जल नहीं है, गुलाब जल बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करो वो जो गुलाब जल की शीशी जो वो स्टील का जो वो डालने का है ना गुलाब जल छिड़कने का है, उसमें एक काम करो पानी डाल के ले आओ, आइए साहब आइए आइए साहब आइए, बहुत अच्छा पूरी बारात आ गई, अरे दूल्हे राजा आ गए, आइए साहब आइए आइए, हाँ अरे बैंड वाले भैया, ओ बैंड बाजे वाले भैया, ओ भाई बैंड बाजे वाले भैया, अरे जरा बंद कर देना भाई, अरे अरे मिलनी का प्रोग्राम होने वाला भाई, ओ बैंड बाजे वाले अरे बंद करो बंद करो, ये किसने चिल्लाया बंद करो बैंड वाले भैया लोगों को, मेरे ससुर ने, वो जो ससुर हैं हमारे आज भी हैं जीवित अवस्था में हैं, बहुत सारी उम्र भगवान से वो लेके आए हैं, हाँ, हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, पहलवान तो है वो, उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाया बैंड बाजे वाले बंद कर दिए बजाना, बजाना क्या बंद कर दिए, वो तो घर चले गए, हाँ उन्होंने रुकना पसंद ही नहीं किया, सीधे घर वापस चले।

ठीक साहब, अब क्या होता है, हम तो दूल्हे बनके खड़े हुए हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा था हमको। वैसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? इसलिए शर्म आ रही थी कि हम पहली बार दूल्हा बने थे। पहली बार दूल्हा बने थे तो कुछ शर्म भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। ठीक है साहब, अब क्या होता है, जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आती है, माहौल बड़ा खुशी का होता है, हैं? लोगों के मन, जितने भी कन्या पक्ष वाले हैं, जितने भी वर पक्ष वाले हैं, वो कुछ ना कुछ खुशी के गीत गुनगुनाते ज़रूर हैं, है ना? तो हमारे यहाँ पर हमारी बारात में भी गुनगुनान का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन गुनगुनाने वाला कोई मनुष्य रूप धारण किए हुए नहीं था। वहाँ पर एक स्पीकर वाला भैया बैठा था, पुराने ज़माने का स्पीकर वाला। उसके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कंपनी में। वो कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आपने कभी आकाशवाणी से वो गाने सुने होंगे? बड़े पुराने पुराने गाने सुनाते आकाशवाणी वाले, और हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ये तो सुना रहा था कौन, हमारी शादी वाला स्पीकर वाला। पुराने ज़माने का ग्रामाफोन था उसके पास। कौन सा ग्रामाफोन, आजकल तो क्या है, वो को टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर चलते हैं, सीडी वगैरह चल रही है, बड़ा मॉडर्न ज़माना है। हम तो पुराने समय की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिस समय ग्रामाफोन चला करते थे। वो उसने क्या किया, स्पीकर वाले भाई ने ग्रामाफोन में चाबी दी। जब चाबी भरी तब तो वो तैयार हुआ और चलने के लिए कौन, ग्रामाफोन। उसने पुराना रिकॉर्ड बजाया। हमने कहा वाह वाह वाह वाह, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए। उसको मेरी शादी में जब कन्या पक्ष के द्वार पर बारात आई, उस समय स्पीकर वाले भाई को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर वो कर लेता तो कौन सा गीत बजाता, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बैंड बाजा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन था वो। उसने मेरी शादी में जब मैं कन्या पक्ष के द्वार पर खड़ा हूँ, घोड़े पे बैठा हूँ, उस समय स्पीकर वाले भाई ने कितना गलत रिकॉर्ड बजाया ग्रामाफोन में चाबी देने के बाद। अरे हाँ, उनके ग्रामाफोन में चाबी देने की आवाज़ से मैं पहले आपको परिचय करा दूँ। बड़ा अजीबो गरीब उसमें से साउंड निकलता है, कैसा आवाज, ये ग्रामाफोन में चाबी देने की आवाज है, ये आपको हर बार सुनाई देगी। हाँ, चाहे आप आज सुन लो तो कल सुन लो तो, क्योंकि उनका जो ग्रामाफोन था बहुत पुराने जमाने का था, सिकंदर आजम के जमाने का, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी शेर शाह सूरी के जमाने का था, शायद मोहन जोदड़ो की खुदाई में उनको मिला था, भगवान जाने कहाँ से मिला था। जब वो ग्रामाफोन में चाबी देते तो ऐसी आवाजें आई। ठीक है साहब, अब हम खड़े हैं, अब देखिए कौन सा गलत रिकॉर्ड बजा रहा है, संपूर्ण गलत रिकॉर्ड, कौन सा।

बताइए, हम दूल्हा बन के खड़े हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हैं, स्पीकर वाले भैया क्या बोलते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर, बात गलत है ना? ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब आगे, भगवान उनका भला करे, थोड़ी सी बुद्धि उनकी कम है, पहलवान है, तो वैसे पहलवान खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते, बड़े ज्ञानी होते हैं, हैं प्रभु भक्त होते हैं, लेकिन हमारे ससुर थे, थोड़ा सा अनोखा ही स्वभाव था उनका। वो हमारे पास आए, हमसे बोलते हैं, हाँ दूल्हे राजा, हे दूल्हे राजा अब आप आ गए हैं, हैं दूल्हे राजा अब आप नीचे घोड़ी से, हे दूल्हा, अरे ए दूल्हा, अबे ए दूल्हा नीचे उतर, तो हम उतरने की जगह गिर पड़े। तो लोगों ने कहा, कन्या पक्ष वाले बोलते, अरे दूल्हा गिर गया, दूल्हा गिर गया, तो हम खड़े होकर बोलते, हमने कहा किसने कहा गिर गया, ये तो हमारी स्टाइल है, हम ऐसे ही उतरते हैं। चलो साहब, कन्या को बुलाया गया, यानी मेरी धर्मपत्नी जो अब हो चुकी है, उस समय तो होने वाली थी, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया, उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला, मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र

तो होने वाली थी। मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया, उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला। मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र वर्ग हैं जो मेरी शादी में मेरे साथ गए थे मेहमान बन के, उन सभी ने मुझसे बोल दिया था कि दूल्हे राजा, इतना याद रखना, जिस समय तुम्हारी धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारे सामने आए माल्यार्पण के लिए, जयमाल के लिए, उस समय अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखना नहीं। तो हमने, क्यों भाई, वो तो मेरी पत्नी होने वाली है, मैं क्यों चेहरा ना देखूं? कहता, नहीं नहीं मत देखा, उस समय नहीं देखते भाई, बड़ा बुरा लगता है, बाद में तो जीवन भर देखना है। हमने, चलो भाई आपकी बात मान लूंगा, आंखें अपनी बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। वहां पर हुआ उल्टा, मेरी जो धर्मपत्नी थी उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से कुछ और अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो दुल्हन, जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, और तो जब तुम माला पहनाने अपने दूल्हे राजा के पास जाओगी ना, तो जब माला पहनाओगी ना, तो उस समय अपने पति का चेहरा देख लेना। हाँ, अगर एंड बैंड मोटर स्टैंड हो तो माला नहीं पहनाना। हाँ, नहीं तो एक बार माला पहना दी ना, तो समझ जाओ गई भैंस पानी में। ठीक है साहब, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने उनको माला पहनाई, जयमाल हो गया। बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत आनंद आ रहा था। उस समय स्पीकर वाले भैया को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई बढ़िया सा गाना बजाते था, लेकिन नहीं, उसने नहीं बजाया, उसने अपने मन का किया। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, होने वाली वाइफ ने जब मुझे देखा, उस समय वही पुराने जमाने के ग्रामाफोन में चाबी देने के बाद कौन सा रिकॉर्ड बजाता है, वो आए, आए, आए, आए, आए।

0: बेटा मिल गया।
1: साहब कहानी आगे बढ़ती है, अब फेरे होते हैं। एक फेरा हुआ, भावरे जिसको हम बोलते हैं, एक फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जो हमारे पूजा कराने वाले श्रीमान जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा, मालूम नहीं क्या बात है, थोड़ा लालच उनमें ज़रा ज़्यादा आ गई थी, क्या इत्तेफाक था भगवान जाने। वैसे लालच आना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कौन थे वो, मुझे कुछ अजीब से लगे जो मेरी शादी करा रहे थे। वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और कुछ अनोखी अनोखी चीज़ें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम स्वाहा। लड़का लड़की के नाना नानी, काका काकी, मासा मासी, भाई भाभी, सबको बुलाओ स्वाहा। सब होती है विदाई दूसरे दिन। विदाई का मार्मिक बड़ा दृश्य होता है। विदा हो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में रो रहे थे। मजबूरी में रो इसलिए रहे थे कि नहीं रोएंगे तो रिश्तेदारी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग संतरे के छिलके आंखों में मार के रो रहे हैं, कुछ लोग पिपरमेंट लगा के रो रहे थे। चलिए साहब, जब पूरी जनता रो रही थी उस समय कन्या का छोटा भाई यानी मेरी धर्म पत्नी का भाई, मेरा साला हुआ वो, है ना, तो मेरा साला मेरे ससुर के पास यानी वो स्वयं अपने पिता के पास जाकर बोलता है,
2: कहले बाबूजी अपनी दीदी बहुत रो रही है, बाबूजी बहुत रो रही है बाबूजी, वो जो जीजा जी जबलपुर से जो गोली पे बैठ के दूल्हा बन के आए हैं ना बाबूजी, ये तो बहुत हंस रहे हैं बाबूजी, अपनी दीदी रो रही है और जो जीजा जी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है बाबूजी?
1: तो मेरे ससुर ने, उस लड़के के पिता ने कितनी बात बढ़िया कही, कहा बेटा तुम्हारी बहन इसलिए रो रही है कि आज उसको आखिरी दिन रोना है बेटा, और तुम्हारा बहनोई जीजा जो जबलपुर से आया है वो इसलिए हंस रहा है कि बाकी जिंदगी उसको रोना है बेटा। कन्या की विदा हुई, दुल्हन साहिबा यानी हमारी धर्मपत्नी को हम विदा करा के जबलपुर ला रहे थे। उस समय स्पीकर वाले भैया को कोई बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो स्पीकर वाला था वो आकाशवाणी से संबंधित नहीं था, उसने पूरी तरह गलत रिकॉर्ड बजाया विदा के समय। कौन सा रिकॉर्ड बजाया देखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की आठवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में कल भोपाल में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम और सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र हिंगोली जिले में आज भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

बहनों नमस्कार। कार्यक्रम महिला सभा की आज की कड़ी में आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो सखी सुधा मिश्रा। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहनों अब तो बारिश की फुहारों ने गर्मी की तपिश से बहुत राहत दे दी है। वर्षा ऋतु का स्वागत तो बहनों हमारे कवियों लेखकों ने अपनी विशिष्ट शैली अपने विशिष्ट अंदाज में खूब किया है। हमने अपने स्कूली दिनों में भी बहुत कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेख पढ़े हैं, आलेख पढ़े हैं। मतलब ये बहनों कि वर्षा ऋतु की महत्ता

इसकी खूबसूरती से तो हम भली भांति परिचित हैं। बारिश के पानी में कागज़ की कश्ती, कागज़ की नाव खूब बनाई खेली होगी आपने भी। पैदल चलते हुए वर्षा के पानी में पैरों से छपाक छपाक करते, अटखेलियां करते हुए ही पहले का बचपन बड़ा हुआ करता था। तो आप अपने बचपन की यादों में खो ना जाएं, इसलिए पहले हम आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत बारिश के गीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: पेनो, अभी हम बात कर रहे थे बारिश के मौसम की खूबसूरती की, लेकिन इस ऋतु में अगर हमने थोड़ी असावधानी रखी बहनों तो हमें परेशानी हो सकती है। और आपका यह प्रफुल्लित मन गुस्से, परेशानी और चिड़चिड़ाहट से भर सकता है। तो इसलिए बहनों, अपने कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे आप बिना परेशान हुए, बिना ज़्यादा किसी तरह की परेशानी में आए, आप हर मौसम का आनंद ले सकें। तो अब बारिश की ही बात लें। इस समय बहनों हमें अपने खाने पीने में विशेष एहतियात की ज़रूरत होती है। वातावरण में नमी की वजह से चीज़ों में कीड़े जल्दी लगते हैं, खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो हमें करना बस इतना है कि भोजन कम बनाना है, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही भोजन बनाएं। भूख से थोड़ा अगर हम कम खाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से भी हम खुद को बचाकर रख सकेंगे। पीने के पानी में भी सावधानी बहुत ज़रूरी है बहनों। दूषित जल बिल्कुल भी ना पिएं, पानी का पात्र भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें, फिल्टर पानी ही पिएं। अगर फिल्टर की सुविधा ना हो तो पानी को उबाल कर ठंडा करें और छान कर उसका सेवन करें। निश्चित रूप से आप कई बीमारियों से बची रह सकेंगी। अपने घर और आसपास पानी न जमा होने दें ताकि मच्छर न बढ़ें और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम अपने आप को बचाकर रख सकें। बहनों, इस समय वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रही हैं तो अपनी गति नियंत्रित रखें, हेडलाइट का उपयोग करें और पर्याप्त दूरी भी बनाकर रखें। गीले हाथों से घर के किसी भी स्विच या विद्युत उपकरण को न छुएं। अगर आप कहीं रास्ते में हों बहनों और बारिश होने लगे और बिजली चमकने लगे ज़्यादा, तो ध्यान रखें कि खुले मैदान, विद्युत खंभे, ऊंचे पेड़ के नीचे आप न खड़े हों। यहाँ इन जगहों से खड़े होने से आप बचें। अगर भीग गई हों पानी में तो जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहने, क्योंकि इस समय त्वचा संबंधी भी तमाम परेशानियां हो जाती हैं। तो बहनों, बस हमें थोड़ा सा अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, अपने घर को थोड़ा और ज़्यादा सूखा और साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस मौसम का पूरा आनंद ले सकेंगे। क्योंकि बहनों, वर्षा केवल ऋतु नहीं, प्रकृति का वह मधुर संगीत है जो सूखी धरती में भी नए जीवन का संचार कर देता है। तो थोड़ी सी सावधानी से हम भी इस ऋतु के नवजीवन के संदेश को आत्मसात कर सकते हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं आज की अपनी भेंटवार्ता। आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय है बहनों, बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। इस विषय पर डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी से बातचीत की है हमारी साथी आशा पारे ने।
1: सेहत की बात कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। बहनों, हम सब जानते हैं कि बच्चों में दांत निकलने की जो शुरुआत होती है वो ऐसा समय होता है जब बच्चा अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह सकता, बल्कि उसकी सारी तकलीफें हमें ही समझनी होती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ दंत चिकित्सक। और डॉक्टर साहब से हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार
1: है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बच्चों में किस उम्र से दांत निकलने की शुरुआत हो जाती है?
2: बच्चों में 6 माह का जब बच्चा होता है तब

0: दांत निकलते हैं
1: जी।
0: और ये जो दांत हैं नीचे के जो दांत रहते हैं नीचे के जबड़े में, वो सामने के दांत निकलना चालू होते हैं और 2.5 वर्ष तक की उम्र में ये दूध के दांत निकलते हैं। पहले इन्हें दूध के दांत कहा जाता है
1: जी।
0: मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको, हम अपनी डेंटिस्ट्री की भाषा में डेसिडुअस टीथ कहते हैं
1: जी।
0: 2.5 साल के पश्चात जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसके परमानेंट टीथ जो कि जीवन भर उसके साथ देते हैं वो निकलना चालू होते हैं, और ये दूध के दांत जो है उस समय से निकल मुंह के अंदर से बाहर निकल जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जब बच्चों में दांत निकलने की शुरुआत होती है तो बच्चे कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका रोना भी बढ़ जाता है, तो क्या उनको कोई तकलीफ होती है इस
0: हाँ,
1: समय में?
0: बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों में जो मेनली जो देखा गया है कि दस्त लगने की प्रॉब्लम जिसे हम डायरिया कहते हैं
1: जी,
0: उल्टियाँ होती हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम होता है, हल्का सा फीवरिश भी बच्चों को आता है, बुखार भी रहता है और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं
1: जी, तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए?
0: उस समय पे जैसे कि ग्राइप बॉटल वगैरह है, कैल्शियम की सिरप है
1: जी,
0: ये देना चाहिए, और बच्चा अगर फीवर में है तो पैरासिटामोल के ड्रॉप्स देना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं
1: जी,
0: उनसे कंसल्ट कर लिया जाए उस समय तो वो, क्योंकि हम लोग क्या है कि बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके जो ड्रॉप्स रहते हैं डोजेज रहते हैं वो उनको बहुत अच्छे से मालूम रहते हैं
1: जी,
0: तो बच्चों के डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए।
1: अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 माह के बाद बच्चे को हम कुछ आहार ऊपरी भी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या उस समय में भी कुछ खान पान का विशेष ध्यान रखें, या जैसे माँ फीडिंग कराती है तो माँ अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करे?
0: नहीं, माँ को तो पौष्टिक आहार लेना ही चाहिए। जब माँ पौष्टिक आहार लेगी तो स्वाभाविक है कि जो मिल्क है माँ का वो बच्चे के शरीर में जाएगा तो वो भी उसके लिए ताकतवर साबित होगा।
1: कभी कभी डॉक्टर साहब जो दांत निकलते हैं बच्चे के वो टेढ़े मेढ़े से निकलने लगते हैं, तो क्या इस बारे में हम कुछ सावधानी पहले से ले सकते हैं?
0: देखिए, दूध के दांत जो है जब बच्चा अंगूठा पीता है तो ये जो जब तालू है ऊपर का ये थोड़ा सा बढ़ जाता है आगे, परंतु अगर बच्चा 2.5 साल तक की उम्र में दांत पीता है और अंगूठा पीता है तो उसमें जबड़ा जो है नॉर्मल अपने समय पे ग्रोइंग स्टेज में एडजस्ट हो जाता है। अगर 2.5 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा पी रहा है तो फिर इसके दांतों में जबड़ा जो है इसके बाहर आने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चा अंगूठा पीना छोड़ दे
1: जी।
0: अब इसके लिए उपाय है कि जैसे कि कोई कड़वी गोली लगा दिया जाए या मिर्च लगा दी जाए या हाथ में ऐसा टेप बांध दिया जाए कि बच्चे जो है अंगूठा नहीं पी सकें। टेढ़े मेढ़े की बात है तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं ये परमानेंट टीथ में होते हैं, दूध के दांतों में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मेनली टेढ़े मेढ़े दांतों में परमानेंट टीथ में दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं
1: जी। कभी कभी बच्चों में दांत देर से निकलते हैं तो माता पिता को चिंता होने लगती है, तो बच्चों में दांत समय पर निकले इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: इसके लिए तो वही बताया मैंने आपको, कैल्शियम जो सिरप है ये देना चाहिए बच्चों को।
1: किस उम्र से?
0: 5-4 महीने से दे सकते हैं अपन, और ये तो 6-10 साल तक देना उचित रहता है। अच्छा, एक कंटिन्यूएशन में नहीं देना चाहिए, 1-2 महीने दिया फिर कुछ 2-4 महीने का इंटरवल कर दिया फिर दिया, इस तरीके से इंटरवल के में देना चाहिए।
1: तो जैसे आपने कहा कि ग्राइप वाटर दे सकते हैं बच्चों को, तो क्या ग्राइप वाटर के साथ में कैल्शियम सिरप
0: दे सकते हैं? ड्रॉप्स दे सकते हैं
1: जी। तो ऐसे मतलब पूर्व में यही उपाय अगर हम अपना लें तो बच्चों के दांत सुंदर और सही ढंग से निकल सकते हैं।
0: हाँ, इसमें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं मुंह के अंदर
1: जी,
0: तो बच्चे जैसे कि बॉटल फीड करते हैं
1: जी,
0: तो एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए रात के समय पे, खासकर कि जब बच्चे रात को रोते हैं और बॉटल से फीड करा दिया जाता है
1: जी,
0: उसके बाद एक सादी बॉटल रखना चाहिए पानी की
1: जी,
0: बाद में उसको लगा देना चाहिए, नहीं तो क्या है दांतों की जो दूध की लेयर है वो दांतों में बच्चों के जम जाती है और एक रैम्पेट केरीज होती है, उससे बच्चों के पूरे दांत जो है कीड़े खा जाते हैं। तो अगर पानी की बॉटल लगा देंगे तो वो जो दूध की लेयर जम गई है दांतों में वो धुल जाएगी और वो पेट में चला जाएगा पानी, तो उससे दांत क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे बार बार तो ब्रश करा नहीं सकते, आप कुल्ला उनको करा नहीं सकते, तो पानी एक ऐसा सब्सटेंस से जो कि मुंह को बिल्कुल क्लीन रखता है और कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है
1: जी। ये तो सचमुच बहुत उपयोगी जानकारी है जिसका अक्सर माएं ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि रात में नींद में रहते हैं तो बच्चे को बस दूध की बोतल लगाई और उसके बाद में मुंह धोने का ध्यान नहीं रहता,
0: लगा देना चाहिए,
1: तो पानी की बोतल लगाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। क्या इसके अलावा और कोई सावधानी जो ली जा सकती है?
0: और कोशिश ये है करना चाहिए कि जैसे कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों को पेस्ट तो ब्रश करने की आदत डालना चाहिए
1: जी।
0: कभी कभी बच्चे पेस्ट खा जाते हैं तो कुछ ऐसे पेस्टेस हैं जो बच्चों के लिए खास आते हैं
1: जी,
0: उनको कराना चाहिए। बच्चे अगर पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कपड़े से कम ये है कि गीला पानी का लेके और दांतों में अच्छे से मसूड़ों में फेर के, जीभ में फेर के
1: जी,
0: वो पूरा जो लेयर जम जाती है खाने की दांत और मसूड़ों में और जीभ में वो उसको धो दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: ये माँ की जिम्मेदारी है,
0: मुँह को साफ रखना है बच्चे।

0: बिल्कुल, तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है डॉक्टर साहब, और हमारी जो भी श्रोता बहनें वो बहुत ध्यान से इस भेंटवार्ता को सुन रही हैं, और इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखेंगी तो बच्चों को जो दांतों से संबंधित परेशानियां होती है उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को जो भी परेशानियां होती है वो पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब होती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी, इसके अलावा और कोई संदेश जो आप बहनों को देना चाहेंगे?
1: अगर जैसे दूध के दांत है, अगर कीड़े वगैरह लग गए उन बच्चों में, क्योंकि बच्चों की क्या है तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि अगर कीड़े लग गए हैं तो उसको समय रहते तकलीफ होने से पहले उन दांतों को फिलिंग भरवा दिया जाए, जिससे कि उनको खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि जो दाढ़ें हैं वो 11.5 से 12.5 साल की उम्र में निकलती हैं, दूध की जो दाढ़ें हैं, सामने के दांत तो 6 साल से निकलना चालू हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। दाढ़ों को बचाना जरूरी रहता है, क्योंकि दाढ़ें अगर अच्छी रहेंगी तो बच्चा कोई भी चीज़ अच्छे से चबा लेगा, अच्छे से च्यू कर लेगा। कोशिश ये करना चाहिए जो चॉकलेट्स वगैरह हैं जो ज़्यादा चिपकती हैं दांतों में, जिससे कि कैविटी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनको नहीं दी जाए। च्यू चबाने से मुंह की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस जो अन्य के कण दांतों के बीच में फंसे रहते हैं ट्विस्ट होके धुल जाते हैं, और एक क्लीनिंग प्रोसेस होती है। तो ये आदत डालना चाहिए बच्चों को, और ये जरूर सिखाना चाहिए कि चबाने के बाद में उसको फेंक दिया जाए, बाहर थूक दिया जाए, अंदर नहीं ले उसको शरीर के, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, तो मुंह साफ रहेगा तो सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने मसूड़े मजबूत होने वाली बात कही है, तो कई बार बच्चों को कुछ हार्ड चीज़ चबाने के लिए मन करता है, उस समय में बच्चों के दांतों में कुछ ऐसा, उनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ हार्ड चीज़ चबाई जाए, तो माताएं अक्सर प्लास्टिक की कुछ चीज़ें दे देती हैं उनको चबाने के लिए, तो उससे कोई नुकसान?
1: नहीं नहीं, देखिए क्या है कि जैसे 4 माह का जब बच्चा रहता है, 5 माह का तब जो उसके बिल्कुल दांत निकलना चालू होते हैं, तो उस समय बच्चों में मसूड़ों में इचिंग होती है। इचिंग होने से क्या रहता है कि उनको दबाव पड़ता है मसूड़ों में, उनको लगता है कि मैं कोई चीज़ कड़ी दबाऊं, तो जैसे कि लकड़ी की पहले चलते वो आती थी मुठिया बोलते हैं, आज का टीथर वगैरह जैसे आते हैं फाइबर उसके रहते हैं, क्या बोलते हैं प्लास्टिक के, वो तो वो दे देना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको मसूड़ों से दोनों मसूड़ों के बीच में दबाए, तो उससे क्या प्रेशर से वो जो दूध के दांत है वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे, और जो बच्चों के मसूड़ों में इरिटेशन हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो कम हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी, और निश्चय ही इस जानकारी से वो लाभान्वित हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने यह भेंटवार्ता सुनी, विषय था बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी, और इनसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर आशा पारे।

बहनो, अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। एक ऐसा घर जहाँ सुरक्षा हो, सम्मान हो और बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। तो बहनों, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे कि देश के प्रत्येक पात्र परिवार के पास रहने के लिए सम्मानजनक घर हो। बहनों, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही पात्र परिवारों के लिए है। गांव में संचालित इस योजना के तहत परिवार को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मकान के साथ साथ शौचालय निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और दूसरी जरूरी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। वहीं शहरी योजना में वे परिवार लाभ ले सकते हैं जो पहली बार अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। जो भी पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार सहायता दी जाती है। गृह ऋण पर ब्याज में भी राहत प्रदान की जाती है। तो बहनों, इतनी सुविधा अगर हमें शासन की तरफ से मिल रही है तो क्यों कोई भी बेघर रहे। तो बहनों, अगर आपकी पहचान में भी ऐसे लोग हों जो शासन की इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर बताएं। अपना घर का सपना हर किसी का साकार हो, इसी उम्मीद के साथ हम आज अपनी चर्चा यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों, रोचक चर्चा के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज बस इतना ही। अनुमति दें अपनी सखी सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

0: महिलाएं अभी सुन रही थीं अपना मनपसंद महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इंदुबाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदुबाला के स्वर में ये लोक भजन।

इंदु बाला मिश्रा के स्वर में अभी आपने सुना लोक भजन। लीजिए अब सुनिए झूला गीत, स्वर इंदु बाला मिश्रा का है।

इंदुबाला मिश्रा के गाई इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बनर्जी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए शुभ्रा बनर्जी की आवाज़ में ये गीत।

शुभ्रा बैनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्रियों को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा ये है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

सईद कादरी का लिखा अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मर्डर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया।

इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। परिक्रमा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हो गए, जहां वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांवों में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिक

0: के नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप

0: को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया।

0: जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, फिल्म जुर्म से। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत लिखा है इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। और फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। बेलाताल दमोह मध्य प्रदेश से रवि खरे, सुनील खरे, बबीता, रजनी, आदित्य और अनुश्री खरे ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है खयाम ने। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल अख्तर रुमानी के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रिचा, स्वीटी सागर रिया और ऋषभ राजावत की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हसीना मान जाएगी का ये गीत।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कन्यादान से। नक्श लैल पुरी का लिखा ये गीत जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की। पसंद आप सभी श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की यह परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। केंद्र सरकार ने कृषि अंतरीकरण उपमिशन के तहत किसानों को बड़ी मदद की है। अब तक देश भर में किसानों को लगभग 22 लाख कृषि मशीनें दी गई हैं। इनकी कीमत करीब 9,404 करोड़ रुपए है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा कृषि में महिला उद्यमिता के विकास, इस विषय पर डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से की गई भेंटवार्ता। समय याद रखिएगा शाम 7:21। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात 10:00 और रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वसंत रानाडे का राग कमोद में वायलिन वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ

मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आएंगे इंदु बाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदु बाला मिश्रा के स्वर में ये लोक भजन।

इंदु मिश्रा की गाई, इंदु बाला मिश्रा की गाई इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बनर्जी के गाए इस गीत के बाद सुगम संगीत में लीजिए अब सुनिए ये भजन, स्वर शुभ्रा बनर्जी का है।

शुभ्रा बनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल जले का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

इंदिवर का लिखा बप्पी लहरी का संगीत से सजा हुआ गीत अब सुनिए, बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा।

आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एक लड़का एक लड़की से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञान शील एकता के ध्येय वाक्य के साथ विद्यार्थी और युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा के संस्कार प्रदान करने वाला संगठन है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली के कार्य की समीक्षा की। यहाँ भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहाँ काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात में मंदसौर जिले के करोट स्थित त्रिपुरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। और मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल। प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।
1: समन्वित कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल। हिंदी रेडियो रूपांतरण किया है दिनेश राय ने और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: क्यों ल्यूका ल्यूकिश, बता सकते हैं गवर्नर साहब ने हमें अचानक यहाँ क्यों तलब किया है?
1: पता नहीं कमिश्नर साहब, जाने क्या बात है। लीजिए, वो आ रहे हैं गवर्नर साहब।
0: आदाब गवर्नर साहब।
2: आदाब, आदाब, बैठिए बैठिए। हाँ, मैंने आप सबको एक ऐसी खबर सुनाने को बुलाया है जिसे बुरी खबर भी कहा जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल तशरीफ ला रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर जनरल?
2: सेंट पीटर्सबर्ग से कोई इंस्पेक्टर जनरल भेजा गया है, वो भी खुफिया तौर पर।
3: लेकिन क्यों, किस सिलसिले में?
0: उनके आने का मकसद क्या है?
2: जाहिर है, हमारी जांच पड़ताल करने भेजा गया है।
0: खुदा खैर करे, कब तक आने की खबर है सर?
2: कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है हजरत अब तक आ ही चुके हो।
0: आई?
4: अरे इतना बड़ा अफसर आए और पुलिस को पता न चले, ये कैसे मुमकिन है?
2: वो सब छोड़ो कप्तान साहब, फिलहाल तो अपने रंग रूटों की वर्दी मर्दी ठीक कराओ, उनका हुलिया सुधरवाओ और ताकीद करो कि जब तक अफसर का दौरा खत्म नहीं हो जाता, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, निकम्मेपन और लापरवाही से बाज रहें। और डॉक्टर, आप अपने अस्पताल का हुलिया दुरुस्त करवाइए।
0: हाँ, और क्या, कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर
2: कमिश्नर, सड़कों पर लगे कचरों के ढेर हटवाओ, नालियां साफ करवाओ।
0: सर,
2: मतलब ये कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है?
0: यस सर।
2: आप सब अपने अपने काम पर मुस्तैदी से जुट जाइए।
0: ठीक है, इजाजत दीजिए गवर्नर साहब। सलाम।
2: सलाम।
4: रुकिए रुकिए साहिबान, रुकिए।
0: लीजिए, पोस्ट मास्टर अब तशरीफ ला रहे हैं। अरे कहाँ थे जा?

0: जनाब,
1: आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे मैं उसका पता ढूंढने में लगा हुआ था और वो मैंने ढूंढ निकाला है।
0: हाँ?
2: क्या, कौन है,
3: कहाँ है?
1: अरे बताता हूँ। ए डॉबजिंस्की
4: जी,
1: सबको सुनाओ वो बात जो तुमने मुझे बताई थी।
4: जी
0: साहिबान, मैं सिटी गेट के पास वाले होटल निकोलस में गया था।
1: वहाँ क्या देखा तुमने?
0: मैंने वहाँ एक अजनबी नौजवान को देखा, रोवीला चेहरा, बेहद कीमती और शानदार लिबास, चाल एकदम अफसराना, और साथ में एक अदद खिदमतगार भी।
5: ओ, बताते चलो।
4: जी
0: होटल के जो बिल उसके पास भेजे जाते हैं उनका भुगतान नहीं करता, ठाट से दस्तखत करके लौटा देता है।
2: ओहो, ठेठ अफसराना अंदाज।
0: जी उसने कह रखा है कि बिलों का भुगतान सेंट पीटर्सबर्ग से किया जाएगा।
2: हैं? सेंट पीटर्सबर्ग से?
6: क्या करें, चलकर सलाम ठोकाएं सर।
5: फिलहाल तो मैं जाकर संभालता हूं उसे। डॉबजिंस्की?
4: जी सर।
5: तुमने उसे देखा है ना?
4: जी हाँ।
5: तो आओ मेरे साथ।
4: जी चलिए।
7: क्या बात है ओसिप, बहरा अब तक खाना नहीं लाया?
8: लाएगा भी नहीं, होटल मालिक ने सख्ती से मना कर दिया है, जब तक पुराना हिसाब चुकता ना हो हमें खाना ना दिया जाए, ना चाहे।
7: इस होटल वाले की ये जुर्रत, हमारे साथ ये बदतमीजी?
8: क्यों, आप कोई तोप हो? 8 दिनों से बिना ढीला चुकाए ठाट से खा पी रहे हो, बिल आता है तो दस्तखत इस तरह ठोक कर लौटा देते हो गोया कहीं के जनरल कर्नल हो।
7: अबे हम जो भी हैं किसी से कम नहीं है। वो तो बुरा हो उस कमबख्त मेजर का, जुए में पत्ते बदलकर मेरी सारी रकम झटक ली, अब क्या करूं। अरे ये कुछ कपड़े बिकवाकर पैसों का इंतजाम कर लो।
8: ठीक है अभी ले जाता हूँ।
7: लेकिन नहीं।
8: क्यों?
7: इन शानदार कपड़ों से ही तो मेरी इज्जत है, अरे ये बेच दिए तो कोई टके को नहीं पूछने वाला।
8: ओफो, तो फिर मैं क्या करूँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है।
7: अरे किसी भी तरह उस बहरे को पटा ले ओसिप, बस आज और खाना खिला दे, कल होते ना होते हम यहाँ से खिसक लेंगे।
8: कोई खिसकने देगा तब ना, होटल मालिक ने धमकी दी है, सीधा गवर्नर से शिकायत करके जेल की हवा खिलवाएगा हमें।
7: अरे फिलहाल तो कुछ भी खिलवा दे ओसिप।
8: ठीक है कोशिश करता हूँ।
9: हुजूर गवर्नर साहब, खुशामदीद खुशामदीद, तशरीफ लाइए सर तशरीफ लाइए, मैं तो आपकी खिदमत में खुद ही हाजिर होने वाला था। दरअसल बात यह है कि एक शख्स अपने नौकर के साथ यहाँ पर ठहरा हुआ है।
0: जी हाँ, उसी के बारे में मालूमात करने आए हैं सर, बुलाओ उन्हें।
9: जी अभी लीजिए। हाँ वो रहा उसका नौकर। ए सुनो सुनो, अरे क्या नाम है तुम्हारा, इधर आओ।
8: आ गया, फरमाइए।
9: देखो गवर्नर साहब तशरीफ लाए।
8: हाँ तो मैं क्या करूं,
9: अपने मालिक को भेजो। देखा सर आपने, नौकर के ये तेवर हैं तो सोचिए मालिक के क्या होंगे। खैर आपके सामने आते ही दोनों चौकड़ियां मारना भूल जाएंगे।
10: कौन जाने वो कि हम।
9: आपने कुछ फरमाया सरकार?
10: नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे मालूमात तो की होगी तुमने, कौन है कहाँ से आए हैं।
9: हाँ सिर्फ इतना बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग से आए हैं, और हाँ होटल के किराए और खाने पीने के बिल पर सिर्फ दस्तखत मारकर लौटा देता है।
10: पता है।
9: फिर तो उसकी अच्छे से खबर लीजिएगा सर।
10: खामोश।
9: जी
10: बकवास बंद करो।
9: ठीक है जो हुक्म आपका।
8: देखो जिस बात का डर था वो होकर ही रही, चलिए नीचे गवर्नर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
7: क्या कहा, गवर्नर?
8: हाँ।
7: मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन क्यों?
8: ताकि पकड़कर जेल की हवा खिलवाएं आपको, जाएं जाएं वरना खींच कर ले जाएंगे उसके सिपाही।
7: अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे वो, चल चल आगे चल। अरे घबराता क्यों है?
8: नहीं, आप चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ।
9: वो रहा हुजूर, देखिए उसकी चाल किस कदर अकड़कर चल रहा है।

0: क्या करूं, खुद ही आगे बढ़कर बात करूं, यही ठीक रहेगा।
1: जनाब खैरियत तो है?
2: जी करम है ऊपर वाले का, शुक्रिया। आप?
1: मैं इस इलाके का गवर्नर हूँ।
2: ओ भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
1: मैं खास तौर पर यहाँ ये देखने आया था कि कहीं आप सरी थे खास मेहमानों को इस होटल में कोई तकलीफ तो नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नहीं जनाब, ये तो मेरा फर्ज है।
2: दरअसल इस होटल के बारे में मैं खुद ही आपसे मिलकर बात करना चाहता था। अरे भाई, समझ में नहीं आता, इस कदर मामूली सी बात इस होटल मालिक के समझ में क्यों नहीं आ रही कि
1: नालायक हैं, नालायक। आप शरीफ है, खास मेहमानों की खदमत करना भला ये गोड़ मगज क्या जाने। मैं तो कहूंगा ये होटल आप शरीक है मेहमान की शान के मुताबिक है ही नहीं।
2: नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो खुद चाहता हूं कि इनका हिसाब फौरन चुकता करके झगड़ा खत्म करूं।
1: अरे काहे का हिसाब, काहे का, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सुनो जी, कौन हो तुम?
3: जी होटल वाला
1: साहब, का जो भी बिल हो मेरे दफ्तर से चुका दिया जाएगा।
3: हो गया चुकता, आसमान से गिरे और खजूर में अटके।
1: क्या कहा?
3: मैंने कहा कुछ कहा हुजूर?
1: जरूरत भी नहीं है, आइए जनाब आइए, आप मेरे गरीब खाने पर चल कर रहिए।
2: लेकिन क्यों, मेरा मतलब आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं?
1: अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। सुनो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा?
3: औसेफ।
1: हाँ औसेफ साहब, मेरे साथ जा रहे हैं, तुम सारा सामान लेकर आ जाना।
3: जी जी जी जी।
1: लीजिए लीजिए, कुछ तो लीजिए।
2: अरे बस बस बस, काफी हो गया।
1: ओहो, कहाँ, कुछ भी तो नहीं खाया आपने बेटी?
4: जी पापा।
1: भाई मेरे कहने से तो हमारे मेहमान कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तुम कहो शायद तुम्हारी बात मान जाए।
4: ओ लीजिए ना, लगता है आपको खाना पसंद नहीं आया है ना पापा?
1: हाँ बेटी, ये ठहरे सेंट पीटर्सबर्ग के रहने वाले, हम मामूली कस्बे वालों का खाना भला इन्हें क्यों पसंद आने लगा?
2: अरे नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खाना तो इस कदर लजीज है कि कुछ ज्यादा ही खा गया।
4: सुना पापा, मेहमान क्या फरमा रहे हैं?
1: अब भाई इनकी आवभगत का जिम्मा अब तुम्हारा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आप आराम करें, अगर कहीं जाने की मंशा हो तो बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा।
2: जाना? वो कहाँ, क्यों, मतलब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं?
0: चुपचाप अकेले अकेले मुआयना करना चाहता है, तभी।
2: आपने कुछ कहा?
1: जी नहीं नहीं, मेरा मतलब था आप जिस जगह का भी मुआयना करना चाहें शौक से करें, मैं तो आपकी सहूलियत के लिहाज से साथ चलने की बात कर रहा था। वैसे आप जैसा चाहें इंतजाम हो जाएगा, एक गाड़ी आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहेगी।
2: आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, जहां चाहे ले चलिएगा।
1: यूं तो कई ऐसी जगह हैं जो आप देखना पसंद करेंगे, खास खास जगहों में हमारे स्कूल हैं, हाई स्कूल जरूर देखें, अस्पताल हैं, विधवाओं का सेंटर है, अनाथालय है, चर्च है, जेल खाना है।
2: क्या जेल खाना?
1: चलकर देखिए तो, हमने कैदियों के लिए कितने बढ़िया इंतजाम किए हैं, आपको यकीनन पसंद आएगा।
2: देखिए भाई वो सब मैं बाद में, पहले तो स्कूल और अस्पताल देखना चाहूंगा।
1: बेहतर है बेहतर है, मैं इंतजाम करता हूं।
4: सुनो
3: जी,
4: क्या नाम है तुम्हारा?
3: औसेफ मोहतरमा, खादिम का नाम औसेफ है।
4: तुम्हारे मालिक कहाँ गए हैं?
3: वो तो आपके पिताजी के साथ कहीं गए हैं।
4: ओह हाँ हाँ, कहीं जाने की बात तो हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ औसेफ
3: जी,
4: तुम्हारे मालिक के घर में कौन कौन है? मतलब
3: अकेले।

0: अच्छा, अब तक शादी नहीं की?
1: अरे मैडम, उन्हें फुर्सत मिले तब ना शादी के बारे में सोचें।
0: ओ, क्यों, फुर्सत क्यों नहीं मिली?
1: अब आपसे क्या छिपाना मैडम, सेंट पीटर्सबर्ग के रईसों की जिंदगी के बारे में तो आप जानती होंगी। फिर हमारे मालिक एक तो शौकीन मिजाज, ऊपर से ऐसे सजीले और दिखलौट कि लोग बस घेरे ही रहते हैं। घर में हैं तो कभी ये काउंट चले आ रहे हैं, कभी वो जनरल, कभी फला मिनिस्टर तो कभी फला राजदूत,
0: ओहो,
1: कभी एक लेखक चला आ रहा है, कभी वो एक्टर तो कभी वो एक्ट्रेस।
0: एक्टर, एक्ट्रेस, वो क्यों?
1: थिएटर का बहुत शौक जो है
0: अच्छा, और क्या क्या शौक है उनके?
1: उनके। ओ हाँ, लिखने का बड़ा शौक है, मौका मिलते ही लिखने बैठ जाते हैं।
0: अच्छा, क्या लिखते हैं भला, हमें भी तो सुनाओ।
1: ये क्या बोल गया मैं, वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा, अब मैं बेपढ़ा लिखा क्या जानू। लगता है आ गए, मैं चलूं।
2: वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूं ही अगर आपको।
3: हाँ हाँ पूछिए पूछिए।
2: आपने अस्पताल देखा, कैसा लगा?
3: ठीक है, लेकिन मरीज गिनती के ऐसा क्यों?
2: मुझे डर था इसी बात का। वो बात ये है कि मरीज तो आते हैं, काफी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन इलाज के इंतजाम कुछ इस तरह किए गए हैं कि मर्ज फौरन रवाना हो जाता है।
3: ओ ऐसा तो नहीं, मर्ज के साथ साथ मरीज भी रवाना?
2: ओ, मजाक मजाक। और हाई स्कूल?
3: हाई स्कूल, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा।
2: सत्यानाश।
0: आ गए आप लोग, कहिए कहाँ कहाँ घूम आए आप, कैसा लगा हमारा कस्बा?
2: लीजिए, अब दीजिए साहबजादी के सवालों के जवाब, मैं तो चला।
0: मैं ना जानती थी एक साथ कितने कितने गुण हैं आप में।
3: ना जी ना, मैं कहाँ, मामूली सा आदमी ठहरा।
0: बस बस, बातें मत बनाइए, मुझे सब पता चल चुका है।
3: बाप रे बाप, क्या क्या मालूम कर लिया है इस लड़की ने मेरे बारे में। क्या पता चल चुका है अन्ना ओवोलोवा?
0: यही कि आप लिखते भी हैं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा वो बात। हाँ हाँ कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ।
0: और सुना है जनाब बड़ी खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस से घिरे रहते हैं।
3: हो, क्या बताऊं, जबरदस्ती घेर घार के मुझसे अपने लिए नाटक लिखवा लेती हैं। अरे भाई लिखना पड़ता है।
0: ओहो, कौन कौन से नाटक लिखे हैं आपने?
3: कई कई तरह के नाटक लिखे, अरे मैं तो नाम भी भूल जाता हूं।
0: फिर भी?
3: फिगारो, स्कूल फॉर स्कैंडल।
0: अच्छा, ये नाटक आपने लिखा है? क्योंकि नाम तो किसी और।
3: अरे नाम में क्या रखा है, मैं तो लिखकर भूल जाता हूँ। लोग अपने अपने नाम से छपवा कर खुश होते हों तो इसमें मुझे क्या एतराज।
0: ओह, कितना बड़ा दिल है आपका।
3: अरे
0: वैसे जितना कुछ सुना है आपके बारे में, हैरत होती है एक साथ इतने काम कैसे कर लेते हैं आप, और वो भी ऐसे कि एक दूसरे से जिनका कोई मेल नहीं है। कहां कविताएं, नाटक लिखना, थिएटर, और कहां दूर दूर कस्बे में जाकर अस्पताल, जेल, स्कूल, और भगवान जाने किन किन चीजों का मुआयना करना।
3: मुआयना?
0: देखा आपने, जो बात आप छुपाना चाहते थे वो हमें पता चल गई है। कैसी रही?
3: देखो अन्ना, ये बात तुम अपने तक ही रखना, हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
0: समझ गई समझ गई। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
3: मुझे यकीन है आप पर।
0: और मुझे आप पर।
3: जी
0: मेरा मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में आपके क्या ठाट है ना?
3: अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, काश आप खुद देख पाती और वहां की मौज मस्ती भरी जिंदगी का लुत्फ उठा पाती।
0: ओह, क्या ये कभी मुमकिन हो सकेगा?
3: अब आप चाहें तो जिंदगी भर पीटर्सबर्ग में पूरी शान से बिता सकते।

0: सकती हैं।
1: वाकई?
0: अगर आप चाहें।
1: मेरे जाने पर से क्या होगा? आपको पापा से बात करनी होगी।
0: पापा? ओह समझा, जरूर जरूर। ऐसा है कि अभी मुझे अपनी पुश्तैनी जागीर जाकर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। पिताजी ने बुलाया है तो मैं उनकी भी रजामंदी ले लूंगा, फिर आपके पापा से बात कर ली जाएगी।
1: ओह मैं कितनी खुश हूँ।

0: सुना आप लोगों ने, गवर्नर उस इंस्पेक्टर जनरल को अपना दामाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: वाकई ये तो बड़ी अच्छी खबर है।
0: अच्छी खबर होगी गवर्नर के लिए। इंस्पेक्टर जनरल उनके सारे ऐब, कमियां, खराबियां, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह को मजे से नजरअंदाज कर देगा। मारे तो हम लोग जाएंगे।
1: हाँ, ये तो है। फिर क्या करें हम लोग?
0: एक ही तरीका है, हथेली गरम कर दें उसकी फुर्सत।
1: हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन उसे रिश्वत देंगे किस तरह? सीधे सीधे देने पर कहीं भड़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे सर।
2: मेरे पास एक उपाय है।
1: क्या?
2: क्या? हम जाकर उसे थैली थमा देंगे। वो पूछेगा तो बता देंगे किसी ने डाक से भिजवाई है वो रकम।
0: डाक से वो तुम्हें भी साइबेरिया रवाना कर देगा सीधा।
1: ये भी है, तो फिर क्या करें सर?
0: जो भी हो, उसकी मुट्ठी तो हर हाल में गर्म करना ही होगी।
1: हम तैयार हैं, लेकिन जज साहब आप ही हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं
2: लेन देन के मामलों में,
1: तो पहल तो आप ही को करनी होगी, और पीछे पीछे हम लोग हैं ही।
0: तो बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगा, ठीक है?

0: कौन है?
1: सर सर मैं हूँ, कस्बे का जज।
0: जज साहब? हाँ हाँ, आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए, कैसे आना हुआ?
1: जी कोई खास बात नहीं है, बस सुना कि आप अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं।
0: हाँ, अपनी पुश्तैनी जागीर।
1: जी हाँ जी हाँ, वही वही। मुट्ठी में रुपए रखे हुए हैं, लेकिन कमबख्त को दूं तो कैसे दूं?
0: ये आपकी मुट्ठी में क्या है?
1: मुट्ठी में? ओह माफ कीजिए, वो ये रुपए जाने कैसे?
0: अरे ना ना ना ना, सच पूछिए तो, ये रुपए सही वक्त पर यहाँ पहुँचे हैं।
1: ओह तो समझिए ये आपके ही हैं।
0: नहीं जनाब, इस तरह नहीं। दरअसल सफर में मेरी सारी रकम खर्च हो गई और अभी अपनी जागीर भी पहुंचना है मुझे, तो यूं समझिए कि ये रकम मैं आपसे थोड़े वक्त के लिए उधार ले रहा हूं। उधार?
1: आप जो भी समझ कर लेना चाहें बस ले लीजिए। शुक्रिया जनाब, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आदाब।
0: आदाब। क्या बात है, मजा आ गया मजा।
2: क्या हुआ जज साहब, क्या हुआ?
1: अरे हम तो बेकार डर रहे थे, वो तो अच्छा आदमी है भाई, जितनी जी चाहे रकम दे दो ले लेगा उधार कहकर।
2: उधार?
1: भाई अपना अपना तरीका होता है, जाइए जाइए एक एक करके और थमा आइए।
3: क्या कह रहे हैं आप, खुद आकर देके गए?
0: और क्या, ये देखो।
3: अरे हुजूर, तो अब इंतजार किस बात का है, यहाँ से फौरन निकल ले।
0: अरे क्यों, ऐसी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ये मुफ्त के रईसाना ठाट उठा लें तो क्या हर्ज है? जानते हो, ये बेवकूफ लोग मुझे पीटर्सबर्ग से भेजा गया खुफिया इंस्पेक्टर जनरल समझ रहे हैं। तभी तो ये खातिर तवाजो से खुशामदें और ये थैलियां।
3: अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं?
0: मतलब
3: अगर भांडा फूट गया तो?

0: अगर असली इंस्पेक्टर जनरल आदम का तो
1: बात तो तेरी सही है। ऐसा करो सिर्फ, कोई अच्छी बग्गी देखकर किराए पर ले ले, और हाँ घोड़े मजबूत और तेज दौड़ने वाले हों।
0: वो तो होने ही चाहिए। तो जाऊं?
1: रुक रुक रुक, थोड़ा सा रुक। मैं ये खत लिख रहा हूं, डाकखाने में इसे भी छोड़ देना।
0: खत? कैसा खत?
1: अरे मेरा एक दोस्त है, पत्रकार है, उसके अखबार में तरह तरह की चटपटी बातें छपती रहती हैं, तो बस यहाँ के हाल लिखकर भेज रहा हूँ, छपने पर बहुत मजा आएगा।
0: ठीक है, लेकिन जरा जल्दी, अब तो यहाँ थोड़ा भी रुकने का मतलब है बड़ी मुसीबत में फंसना। या खुदा, बस वक्त रहते यहाँ से निकल भागे तो अच्छा है।

0: अच्छा, तो इंस्पेक्टर जनरल चले गए?
1: अपनी जागीर गए हैं, जल्द ही लौट आएंगे।
0: अब तो वो आपके दामाद हो जाएंगे और आप इंस्पेक्टर जनरल के ससुर।
2: हम पर दया बनाए रखिएगा सर।
1: ओहो, ये भी कोई कहने की बात है। वैसे सोच रहा हूँ बेटी दामाद के साथ मैं भी पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। तंग आ गया इस छोटे और पिछड़े कस्बे में रहते रहते।
0: सही है, इतने ताल्लुकात और रसूख वाले दामाद के होते हुए यहाँ पड़े रहने में क्या दुख है? वहां तो एक से एक बड़ा ओहदा आपको यूं ही मिल जाएगा।
2: इसमें क्या शक है, ये पोस्टमास्टर, इसका तो बदहवास सा कैसा भागता हुआ चला आ रहा है। कहिए जनाब, खैरियत तो है?
3: ये देखिए, पढ़िए।
1: ये खत तो इंस्पेक्टर जनरल का है, तुमने खोलने की जरूरत कैसे की पोस्टमास्टर?
3: पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। दरअसल जब मैंने इस पर लिखा पता देखा तो मेरा माथा ठनका। ये देखिए पता, पोस्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट रोड, सेंट पीटर्सबर्ग। मुझे लगा जरूर मेरी कोई शिकायत भेजी जा रही है, लिहाजा एहतियातन इसे खोल लिया और देखिए कमबख्त ने क्या क्या लिखा है।
1: क्या होश में तो है पोस्टमास्टर, मेरे होने वाले दामाद को कमबख्त कह रहे हो?
3: अरे नाराज होने से पहले जरा खुद पढ़ लीजिए, आपके होनहार दामाद ने आपकी तारीफ में क्या क्या लिखा है। लिखते हैं, इस सूबे का गवर्नर अव्वल दर्जे का घोंचू आदमी है।
1: क्या?
3: मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझकर अपने बंगले में ठहराए हुए है, खूब खातिर करता है और तो और मुझे अपना दामाद बनाने के मंसूबे भी बांधने लगा है।
1: बस, ए, सुनो, तेज से तेज गाड़ियां दौड़ाकर कंबख्त को पकड़ो किसी तरह।
2: सर, अब वो पकड़ में नहीं आने वाला सर, कई घंटों पहले बेहद तेज और चुस्त घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर भाग निकला है।
0: हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर,
2: मोटी मोटी रकमें ऐड कर।
1: तो अब किया क्या जाए?
3: तैयारी
1: है? कैसे तैयारी, काहे की तैयारी?
3: ये टेलीग्राम भी लेकर आया हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग से आया है आपके नाम, पढ़ लीजिए।
1: लाओ।
4: आपको इत्तला दी जाती है कि आपके सभी महकमों की जांच पड़ताल करने के लिए एक इंस्पेक्टर जनरल को यहाँ से रवाना कर दिया गया है।

0: इंस्पेक्टर जनरल, अभी आप निकोलाई गोगोल के इस मूल रूसी नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण सुन रहे थे। रूपांतरकार थे दिनेश राय। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। कमिश्नर मनोज राजानी, गवर्नर राकेश जैमिनी, जज उदय शहाणे, पोस्टमास्टर प्रदीप नेमा, चालबाज अरशद इकबाल, दोबजिंस्की अजय सिंह पाल, खादिम बालेंद्र सिंह कुशवाहा, होटल वाला योगेश कुमार उमाठे और अन्ना दिव्या पवार। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल। प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी भोपाल।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की आठवीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: दोस्त मिले?
2: हाँ जी बोलिए।
1: एक बात बताओ।
2: जी जी।
1: अभी 4-5 दिन पहले मैं सूट पहन के,
2: अच्छा
1: बढ़िया टाई सूट नया और जूते में पॉलिश वगैरह, ऐसा सब बढ़िया टिप टॉप बन के सब्जी बाजार गया।
2: सब्जी बाजार?
1: हाँ, अच्छा। आलू लेना था, भट्टा लेना था और वगैरह धनिया मिर्ची वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं, आलू महंगा मिला, भट्टा महंगा, गोभी महंगी, हरी धनिया मिर्चियां, जितनी भी सब्जी मैंने खरीदी सब महंगी मिली।
2: अरे
1: सब महंगी। हाँ, और जब 2 दिन के बाद सूट मैंने नहीं पहना, मैंने क्या किया, एक पुराना सा मेला कुर्ता था मेरे पास, फटा पैजामा था,
2: क्या बात
1: है, एक रद्दी वाली स्लीपर थी, उसको पहन के मैं सब्जी लेने गया। अरे भैया, आलू सस्ता, भिंडी सस्ती,
2: भिंडी सस्ती,
1: गोभी सस्ती,
2: सस्ती,
1: ये हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग सूट जो पहन के आते हैं उनको महंगा क्यों देते हैं। हाँ यार, हमको महंगा दिया, और जब हम आपका कुर्ता फटा वाला पैजामा वगैरह पहन के गए तो हमको सस्ता दिया यार उन्होंने,
2: सस्ता दिया।
1: हाँ,
2: ये तो कपड़ों का असर लगता है हमको भैया। ऐसा लगता है कि सूट के कारण आपको महंगा दिया।
1: हाँ?
2: और फटे कुर्ते के कारण आपको सस्ता कर दिया।
1: हाँ?
2: औकात देख के।
1: हाँ?
2: अब आप तो एक काम कीजिए,
1: बोलिए,
2: कटोरा लेके चले जाते तो सब्जी फ्री में मिल जाती। एक साहब शौकीन तबीयत के थे, हमेशा अच्छा खाना और अच्छे पहनने पर ज्यादा विश्वास रखते थे, और शौकीन तबीयत के होने के कारण कभी कभार ड्रिंक वगैरह का भी शौक करते थे, और काफी इस तरह के शौक पालते पालते 4 दोस्त और यारों के बीच में काफी प्रसिद्धि पा गए कि साहब फला और अमुक व्यक्ति तो इतने ज्यादा शौकीन हैं कि इनके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु ला के रख दी जाए और इनकी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो ये बिना देखे सिर्फ सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है। एक बार उनकी परीक्षा ली जाती है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है, उनके सामने

एक कप प्याली ला चाय की रखी जाती है। अब बोला जाता है कि साहब बताइए क्या है, आप फौरन सूंघ के बताते हैं साहब ये चाय है। दूसरे सेकंड में उनके सामने कॉफ़ी का प्याला आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, बोले साहब ये कॉफ़ी है। तीसरे सेकंड में उनके पास टमाटर सूप का एक मग आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है। आप आंख में पट्टी बांधे लगातार सूंघ के बताते जा रहे हैं, बोले साहब ये टमाटर सूप है। उसके बाद एक ड्रिंक का पैग उनके सामने लाया जाता है ग्लास में भर के, बोले साहब ये क्या है। आप फौरन कोई ऐसा नाम बता देते, बोले साहब ये हेड वाइपर है, ये ब्रोक राइटर है, ये रूम साइटर है, ये जूनिक बॉक्स है। बोले साहब ये तो हर टाइप का ब्रांड पहचानते हैं। एक ग्लास में खाली पानी भर के इनको दे दिया, बोले साहब बताइए ये कौन सा ब्रांड है। अब पानी को जैसे ही सूंघते हैं उसको दोबारा सूंघने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके बाद ग्लास रख देते हैं और फौरन बोलते हैं साहब ब्रांड जरूर नया है लेकिन मार्केट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गीत और संगीत के बहुत सारे जोक्स और ऑब्जर्वेशंस आपने सुने होंगे। मैं एक ऐसा म्यूजिकल आइटम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था और हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहा था तो टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता था, लेकिन कुछ भजनों और गीतों को क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और इसके लिए वो कई गीतों को पसंद किया और उन गीतों को वो अपनी भाषा में कुछ अंग्रेजी का समावेश करके कुछ हिंदी के शब्दों का चयन करके आप तक पहुंचाया करता और जो उसको पसंद था तो वो लोगों को सुनाया करता और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते। वही कुछ बातें हमने भी सुनी, आपकी प्रस्तुत आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले अंग्रेज एक भजन प्रस्तुत कर रहा है, मैं आपको वो ओरिजिनल भजन सुनाने जा रहा हूँ वो भजन कैसा है और उसके बाद उसकी दो लाइनों के बाद वो अंग्रेज अपने अंग्रेजी शब्दों के समावेश के साथ उस भजन को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। दोनों बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

और इस सुंदर से भजन को अंग्रेज महोदय ने जिस समय गाना शुरू किया तो अपने शब्दों के समावेश के साथ वो किस तरह गा रहे हैं, देखिए उनका अंदाज कुछ और है और वो उस तरह के भजन को अपने अंदाज में किस तरह सुना रहे हैं, एक बार फिर से

अंग्रेज साहब से जब बोला गया कि आप इस तरह भजन तो हमको आपका बहुत पसंद आया है, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई गीत सुना सकते हो तो साहब हमें बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज साहब ने किसी हिंदी फिल्म के गीत को सुनाने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ अपने शब्दों का समावेश किया। तो देखिए, हिंदी फिल्म का किसी हिंदी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जो शायद आ चुका हो या आने वाला हो, आपकी नज़र कर रहे हैं अंग्रेज साहब,

किया और अंग्रेज ने इस गीत को कैसे आप सभी के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये अंदाज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेज इसी गीत को कैसे प्रस्तुत करेगा, अंग्रेज अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
2: माहौल शादी का हमारे पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होता आ रहा है और विगत हजारों सैकड़ों हजारों साल से होता आ रहा है ये माहौल शादी का। जब शादी के माहौल की हम एक जब शुरुआत करते हैं, लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है, लड़का आता है, लड़की को देखता है और फिर सगाई होती है, लगुन भेजी जाती है, फिर शादी के और भी बहुत सारी रस्म पूरी होती हैं, तो इस सब माहौल को देख के बड़ा आनंद आता है। अब विश्वास करिए कि जब कभी भी आप किसी की शादी में जाते हैं मेहमान बनके उसके निमंत्रण पर, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अपनी शादी की बात ज़रूर याद आती होगी। जो कुंवारे हैं उनको तो खैर नहीं आती, क्योंकि वो तो खैर बेचारे सपने देखते रहते हैं कि काश हमारी शादी होती, न जाने कब हमारी शादी होगी। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरे की शादी देख के अपनी शादी की ज़रूर कहानी याद आती है। तो कुछ इसी तरह की बात मैं आपको सुना रहा हूं कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि अभी कल ही मैं एक की शादी में गया था। बड़ा बढ़िया खाना पीना बना था, दूल्हे राजा बैठे थे, दुल्हन साहिबा आई, बहुत आनंद आनंद हुआ, गाना बजाना भी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मेरी अपनी शादी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, वो परेशानी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, परंतु आप सभी से ये निवेदन है कि आप किसी को बताएं ना कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी हुई है।

क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम आकाशवाणी के हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम सभी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन हमारी बात आप किसी को बताइएगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं सुना रहा हूं अपनी शादी की कहानी। हमारी बारात चली जबलपुर शहर से, चलती गई चलती गई चलती गई गुजरात पहुंची। जब गुजरात हमारी बारात पहुंची तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे ससुर को यानी होने वाले ससुर को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी थी कि मेरा लड़का जो दूल्हा बन के आ रहा है वो कार में नहीं बैठेगा, जीप में नहीं बैठेगा, ना तांगे घोड़े पे बैठेगा, वो सिंगल घोड़े पे जरूर बैठेगा, इसलिए घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब बड़े सीधे साधे थोड़ा पहलवान हैं, उनकी वजह से तो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उनकी बालकनी लोग कहते हैं कि खाली है। तो ठीक है साहब, कहानी आगे हमारी शादी की बढ़ती है। घोड़े का इंतजाम किया गया, वो घोड़ा किसी के घर का नहीं था, सर्कस का घोड़ा था। अब सर्कस का घोड़ा दूल्हे के लिए बुलवाया गया। हम जैसे ही उस घोड़े पे बैठे, बैंड बाजे बजे, तो बैंड जब बजते थे तो वो घोड़ा नाचने लगता था, और जब वो नाचे तो हम गिर पड़े। अब बताइए, दूल्हा अगर घोड़े से गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा। हम तो 5 बार गिरे और 5 बार फिर उठ गए, फिर बैठ गए। चलिए ठीक है साहब, कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है, कोई आरती लिए है। तो पहले वहाँ का दृश्य जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बैंड बाजे की आवाज़ बड़ी दूर से सुनाई दे रही है।

किराए के घोड़े पर बैठा था और भगवान को बार बार याद कर रहा था कि हे भगवान, ये घोड़ा अब ना नाचे, और अगर ये नाचा तो मैं गिरा और दूल्हा बन के फिर से एक बार गिरूंगा तो कितना बुरा लगेगा। धीरे धीरे धीरे धीरे चली आ रही है बारात। ये कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची। कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, कहा आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए, आपका स्वागत है साहब, आइए आइए। अरे कुर्सियां लाओ भाई, कुर्सियां लाओ, अरे कुर्सियां लगाओ भाई साहब। हैं, कुर्सी नहीं आई क्या? तो किसी का टेबल कुर्सी को छोड़, तखत तखत कुछ बुलवा लो भाई। अरे चादर वादर कुछ बोरा वोरा बिछा दो भाई जल्दी। आइए साहब, आइए आइए आइए। अरे फूल माला लाओ, हाँ गुलाब जल लाओ, गुलाब जल लाओ। आइए साहब, आइए आइए आइए साहब, आइए। गुलाब जल नहीं है? गुलाब जल बिल्कुल नहीं है? तो एक काम करो, वो जो गुलाब जल की शीशी, वो स्टील का जो वो डालने का है ना, गुलाब जल छिड़कने का है, उसमें एक काम करो, पानी डाल के ले आओ। आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए। बहुत अच्छे, पूरी बारात आ गई। अरे दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। आइए साहब, आइए आइए। हाँ, अरे बैंड वाले भैया, ओ बैंड बाजे वाले भैया, ओ भाई बैंड बाजे वाले भैया, अरे जरा बंद कर देना भाई। अरे अरे मिलनी का प्रोग्राम होने वाला भाई, ओ बैंड बाजे वाले, अरे बंद करो, बंद करो। ये किसने चिल्लाया बंद करो बैंड वाले भैया लोगों को? मेरे ससुर ने। वो जो ससुर हैं हमारे आज भी हैं, जीवित अवस्था में हैं, बहुत सारी उम्र भगवान से, उम्र भगवान से वो लेके आए हैं। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, पहलवान तो है वो, उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाया, बैंड बाजे वाले बंद कर दिए बजाना। बजाना क्या बंद कर दिए, वो तो घर चले गए। हाँ, उन्होंने रुकना पसंद ही नहीं किया, सीधे घर वापस। चलिए ठीक साहब, अब क्या होता है, हम तो दूल्हे बनके खड़े हुए हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा था हमको। वैसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? इसलिए शर्म आ रही थी कि हम पहली बार दूल्हा बने थे। पहली बार दूल्हा बने थे तो कुछ शर्म भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। ठीक है साहब, अब क्या होता है, जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आती है, माहौल बड़ा खुशी का होता है, हैं? लोगों के मन, जितने भी कन्या पक्ष वाले हैं, जितने भी वर पक्ष वाले हैं, वो कुछ ना कुछ खुशी के गीत गुनगुनाते ज़रूर हैं, है ना? तो हमारे यहाँ पर हमारी बारात में भी गुनगुनान का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन गुनगुनाने वाला कोई मनुष्य रूप धारण किए हुए नहीं था, वहाँ पर एक स्पीकर वाला भैया बैठा था, पुराने ज़माने का स्पीकर वाला। उसके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कंपनी में। वो कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आपने कभी आकाशवाणी से वो गाने सुने होंगे, बड़े पुराने पुराने गाने सुनाते हैं आकाशवाणी वाले, और हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो ये तो सुना रहा था, कौन? हमारी शादी वाला स्पीकर वाला, पुराने ज़माने का ग्रामाफोन था उसके पास।

कौन सा ग्रामाफोन, आजकल तो क्या है वो को टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर चलते हैं, सीडी वगैरह चल रही है, बड़ा मॉडर्न ज़माना है। हम तो पुराने समय की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिस समय ग्रामाफोन चला करते थे। वो उसने क्या किया, स्पीकर वाले भाई ने ग्रामाफोन में चाबी दी, जब चाबी भरी तब तो वो तैयार हुआ और चलने के लिए कौन, ग्रामाफोन। उसने पुराना रिकॉर्ड बजाया, हमने कहा वाह वाह वाह वाह, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए। उसको मेरी शादी में जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आई, उस समय स्पीकर वाले भाई को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर वो कर लेता तो कौन सा गीत बजाता, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बैंड बाजा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन था वो। उसने मेरी शादी में जब मैं कन्या पक्ष के द्वार पर खड़ा हूं, घोड़े पे बैठा हूं, उस समय स्पीकर वाले भाई ने कितना गलत रिकॉर्ड बजाया ग्रामाफोन में चावी देने के बाद। अरे हाँ, उनके ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज से मैं पहले आपको परिचय करा दूं, बड़ा अजीबो गरीब उसमें से साउंड निकलता है, कैसा आवाज, ये ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज है, ये आपको हर बार सुनाई देगी। हाँ, चाहे आप आज सुन लो तो कल सुन लो तो, क्योंकि उनका जो ग्रामाफोन था बहुत पुराने जमाने का था, सिकंदर आजम के जमाने का, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी शेर शाह सूरी के जमाने का था, शायद मोहन जोदड़ो की खुदाई में उनको मिला था, भगवान जाने कहाँ से मिला था। जब वो ग्रामाफोन में चावी देते तो ऐसी आवाजें आई। ठीक है साहब, अब हम खड़े हैं, अब देखिए कौन सा गलत रिकॉर्ड बजा रहा है, संपूर्ण गलत रिकॉर्ड, कौन सा।

मिट गई मैं के आया आया अटरिया पे कोई चोराया आया। बताइए हम दूल्हा बन के खड़े हैं द्वार पे घोड़े पे बैठे हैं, स्पीकर वाले भैया क्या बोलते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर, बात गलत है ना। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब आ गए, भगवान उनका भला करे, थोड़ी सी बुद्धि उनकी कम है, पहलवान है, तो वैसे पहलवान खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते, बड़े ज्ञानी होते हैं, हैं प्रभु भक्त होते हैं, लेकिन हमारे ससुर थे थोड़ा सा अनोखा ही स्वभाव था उनका। वो हमारे पास आए, हमसे बोलते हैं, हाँ दूल्हे राजा, हे दूल्हे राजा अब आप आ गए हैं, हैं दूल्हे राजा अब आप नीचे घोड़ी से, हे दूल्हा, अरे ए दूल्हा, अबे ए दूल्हा नीचे उतर, तो हम उतरने की जगह गिर पड़े। तो लोगों ने कहा, कन्या पक्ष वाले बोलते अरे दूल्हा गिर गया दूल्हा गिर गया, तो हम खड़े होकर बोलते, हमने कहा किसने कहा गिर गया, ये तो हमारी स्टाइल है, हम ऐसे ही उतरते हैं। चलो साहब, कन्या को बुलाया गया, यानी मेरी धर्मपत्नी जो अब हो चुकी है, उस समय तो होने वाली थी, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया, उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला, मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र वर्ग हैं जो मेरी शादी में मेरे साथ गए थे मेहमान बन के, उन सभी ने मुझसे बोल दिया था कि दूल्हे राजा इतना याद रखना, जिस समय तुम्हारी धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारे सामने आए माल्यार्पण के लिए जयमाल के लिए, उस समय अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखना नहीं। तो हमने, क्यों भाई, वो तो मेरी पत्नी होने वाली है, मैं क्यों चेहरा ना देखूं। कहता, नहीं नहीं मत देखा, उस समय नहीं देखते भाई, बड़ा बुरा लगता है, बाद में तो जीवन भर देखना है। हमने, चलो भाई आपकी बात मान लूंगा, आंखें अपनी बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। वहां पर हुआ उल्टा, मेरी जो धर्मपत्नी थी उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से कुछ और अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो दुल्हन, जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, और तो जब तुम माला पहनाने अपने दूल्हे राजा के पास जाओगी ना, तो जब माला पहनाओगी ना, तो उस समय अपने पति का चेहरा देख लेना। हाँ, अगर एंड बैंड मोटर स्टैंड हो तो माला नहीं पहनाना, हाँ नहीं तो एक बार माला पहना दी ना, तो समझ जाओ गई भैंस पानी में। ठीक है साहब, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने उनको माला पहनाई, जयमाल हो गया, बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत आनंद आ रहा था। उस समय स्पीकर वाले भैया को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई बढ़िया सा गाना बजा देता, लेकिन नहीं, उसने नहीं बजाया, उसने अपने मन का किया। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, होने वाली वाइफ ने जब मुझे देखा, उस समय वही पुराना

0: बेटा मिल गया।
1: साहब कहानी आगे बढ़ती है। अब फेरे होते हैं, एक फेरा हुआ, भावरे जिसको हम बोलते हैं, एक फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जो हमारे पूजा कराने वाले श्रीमान जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा, मालूम नहीं क्या बात है, थोड़ा लालच उनमें ज़रा ज़्यादा आ गई थी, क्या इत्तेफाक था भगवान जाने। वैसे लालच आना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कौन थे वो, मुझे कुछ अजीब से लगे जो मेरी शादी करा रहे थे। वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और कुछ अनोखी अनोखी चीज़ें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम स्वाहा, लड़का लड़की के, नाना नानी, काका काकी, मासा मासी, भाई भाई।

0: कुछ अनोखी अनोखी चीजें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम स्वाहा, लड़का लड़की के नाना नानी, काका काकी, मासा मासी, भाई भाभी, सबको बुलाओ स्वाहा। सब होती है विदाई दूसरे दिन। विदाई का मार्मिक बड़ा दृश्य होता है। विदा हो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में रो रहे थे। मजबूरी में रो इसलिए रहे थे कि नहीं रोएंगे तो रिश्तेदारी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग संतरे के छिलके आंखों में मार के रो रहे हैं, कुछ लोग पिपरमेंट लगा के रो रहे थे। चलिए साहब, जब पूरी जनता रो रही थी उस समय कन्या का छोटा भाई यानी मेरी धर्म पत्नी का भाई, मेरा साला हुआ वो, है ना, तो मेरा साला मेरे ससुर के पास यानी वो स्वयं अपने पिता के पास जाकर बोलता है,
1: कले बाबूजी अपनी दीदी बहुत रो रही है, बाबूजी बहुत रो रही है बाबूजी, वो जो जीजा जी जबलपुर से जो गोली पे बैठ के दूल्हा बन के आए हैं ना बाबूजी, ये तो बहुत हंस रहे हैं बाबूजी, अपनी दीदी रो रही है और जो जीजा जी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है बाबूजी?
0: तो मेरे ससुर ने, उस लड़के के पिता ने कितनी बात बढ़िया कही, कहा बेटा तुम्हारी बहन इसलिए रो रही है कि आज उसको आखिरी दिन रोना है बेटा, और तुम्हारा बहनोई जीजा जो जबलपुर से आया है वो इसलिए हंस रहा है कि बाकी जिंदगी उसको रोना है बेटा। कन्या की विदा हुई, दुल्हन साहिबा यानी हमारी धर्मपत्नी को हम विदा करा के जबलपुर ला रहे थे। उस समय स्पीकर वाले भैया को कोई बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो स्पीकर वाला था वो आकाशवाणी से संबंधित नहीं था, उसने पूरी तरह गलत रिकॉर्ड बजाया विदा के समय। कौन सा रिकॉर्ड बजाया देखिए।

0: अच्छा आद्या, एक सवाल पूछूं?
1: हाँ अनमोल, लेकिन पहले ये बताओ कि सवाल आसान है या गूगल करना पड़ेगा?
0: अरे गूगल वाला नहीं है, दिमाग वाला है। अगर किसी युवा को उसका मोबाइल और बटुआ दोनों एक साथ खो जाए तो पहले वो क्या ढूंढेगा?
1: आजकल तो मोबाइल, क्योंकि बटुए में पैसे होंगे लेकिन मोबाइल में पूरी दुनिया ही रहती है।
0: बिल्कुल, दोस्त, परिवार, फोटो, यूपीआई, नोट्स। आज का युवा सुबह अलार्म से कम मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा उठता है।
1: और रात को तो बस 5 मिनट और कहते कहते पता ही नहीं चलता कि कब एक घंटा निकल जाता है।
0: हाँ, और रील्स देखने बैठो तो पहले खाना ठंडा होता है, फिर माँ की आवाज गर्म हो जाती है।
1: मजाक अपनी जगह अनमोल, लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी सच में आसान बना दी है। ऑनलाइन पढ़ाई, नई भाषा सीखना, जॉब के लिए आवेदन, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है।
0: सही कहा, आज का युवा सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहा है, कंटेंट बना भी रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, रोजगार भी पैदा कर रहा है।
1: लेकिन जहां इतनी रोशनी होती है वहां थोड़ा अंधेरा भी होता है।
0: बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मेहनत की कमाई पर बस एक क्लिक की दूरी पर नजर लगाए बैठे रहते हैं।
1: इसीलिए अगर कोई मैसेज आए, कंग्रेचुलेशंस, आपने करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आखिर किया क्या था।
0: हाँ, बिना टिकट खरीदे अगर लॉटरी लग रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कहानी में विलन जरूर है।
1: और ओटीपी, उसका मतलब ही समझ लीजिए, ओनली तुम पढ़ोगे, किसी और को नहीं बताएंगे।
0: अरे वाह, ये फुल फॉर्म तो साइबर पुलिस को भी पसंद आ जाएगा।
1: पासवर्ड ऐसा रखिए जो दूसरों के लिए पहेली हो लेकिन खुद के लिए याद रखना आसान हो।
0: मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया बिल्कुल समुद्र जैसी है, जिसे तैरना आता है उसे नए रास्ते मिलते हैं, और जो बिना कुछ सोचे कूद पड़ता है उसे लहरें सबक सिखाती हैं।
1: वाह अनमोल, क्या बात कही है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया से दोस्ती कीजिए लेकिन आंखें खोलकर।
0: सीखिए, बढ़िए, सपने पूरे कीजिए, और सबसे जरूरी, ऑनलाइन जितने एक्टिव रहिए उतने ही सतर्क भी रहिए।
1: क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास है लेकिन स्मार्ट यूजर बनना हमारे अपने हाथों में ही है।
0: तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, जिसे लिया गया है फिल्म बर्फी से और जिसे आवाज दी है निखिल पॉल जॉर्ज, श्रेया घोषाल और प्रीतम ने।

0: गया।
1: आद्या, कभी कभी ना इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जिन्हें पढ़ते ही लगता है, यार इनके बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ा था।
2: बिल्कुल अनमोल, और आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे ही है, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और सेवा को अपना जीवन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं बाबू जगजीवन राम, जिन्हें पूरा देश प्यार से बाबूजी कहता था।
2: वैसे अनमोल, बाबूजी सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है?
1: घर वाले बाबूजी जो कहते हैं पंखा बंद कर दो, बिजली का बिल कौन भरेगा।
2: लेकिन हमारे आज के बाबूजी सिर्फ एक परिवार के नहीं पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं।
1: हाँ, उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, समाज में भेदभाव था, मुश्किलें थी, लेकिन उनके हौसले उनसे कहीं बड़े थे।
2: कहते हैं कि मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत इंसान बनाते हैं। बाबू जगजीवन राम ने भी चुनौतियों को रुकावट नहीं सीढ़ी बना लिया था।
1: उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो उन्होंने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा,
2: और यही शिक्षा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई राह भी बनाई।
1: आजादी की लड़ाई हो या भारत का निर्माण, हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
2: उन्होंने कृषि, रेल और रक्षा जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया।
1: सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे भारत के रक्षा मंत्री थे। उस दौर में भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की जो देश के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था।
2: लेकिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है पता है अनमोल, कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां खराब

0: अब है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा कहा कि परिस्थितियां जैसी भी हों, काम नहीं रुकना चाहिए।
1: सच है, जिंदगी हमें कहां से शुरू करनी है ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कहां तक पहुंचना है ये काफी हद तक हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।
0: तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि रास्ता कठिन है, तो बाबू जगजीवन राम का जीवन याद कीजिए। संघर्ष, मेहनत, शिक्षा और सेवा, इन्हीं चार शब्दों में उनकी पूरी जिंदगी समाई हुई है।
1: और शायद यही वजह है कितने वर्षों बाद भी लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं।
0: बाबू जगजीवन राम जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जब तक है जान से, और जिसे आवाज दी है राघव माथुर और शिल्पा राव ने।

0: आद्या, एक बात बताओ, आजकल सबसे ज्यादा भरोसा लोग किस पर करते हैं? दोस्त पर या पासवर्ड पर?
1: पासवर्ड पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधे लोगों का पासवर्ड आज भी 12345 या password@123 ही होता है।
0: लेकिन सच कहूं, आज हमारी जेब में सिर्फ मोबाइल नहीं होता, पूरा बैंक भी होता है, पहचान भी होती है, और कभी कभी हमारी आधी जिंदगी भी।
1: बिल्कुल अनमोल, UPI, नेट बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ उसी छोटे से फोन में रहता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
0: हाँ, वैसे तुम्हारे पास भी ऐसे मैसेजेज आते होंगे ना कि आपकी KYC आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे मैसेज पढ़कर लगता है इन लोगों को हमारी बैंक से ज्यादा हमारी चिंता है।
1: यही तो उनकी चाल होती है, वो हमें डराते हैं या फिर लालच देते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे क्लिक कर दें।
0: तो क्या करें, मोबाइल चलाना छोड़ दें?
1: अरे नहीं, मोबाइल क्यों छोड़े, बस थोड़ी समझदारी रखिए। जैसे OTP किसी को ना बताना, अननोन लिंक पर जल्दबाजी में क्लिक ना करना, और पासवर्ड ऐसा रखना जिसे गेस करना आसान ना हो।
0: अच्छा, और मैं एक आदत तो हमेशा अपनाता हूँ, कोई भी मैसेज पढ़कर अगर बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा डर लगे तो तुरंत विश्वास नहीं करता। पहले सोचता हूँ, फिर जांचता हूँ, उसके बाद ही कोई कदम उठाता हूँ।
1: वाह अनमोल, यानी पहले वेरीफाई फिर ट्रस्ट, ये रूल तो सबको याद रखना चाहिए।
0: और अगर कभी गलती से ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मदद मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: मुझे लगता है कि आज साइबर सिक्योरिटी भी हेलमेट जैसी हो गई है। पहले लोग कहते थे इतनी सी दूरी है, हेलमेट की क्या जरूरत है, लेकिन आज वही बात कुछ लोग इंटरनेट पे भी कहते हैं, अरे मेरे साथ थोड़ी होगा।
0: और जब तक समझ आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है, इसलिए हेलमेट सड़क पर जरूरी है और साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में।
1: तो दोस्तों, मोबाइल स्मार्ट है, एप्स भी स्मार्ट है, अब बारी हमारी है स्मार्ट यूजर बनने की।
0: तो सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और डिजिटल दुनिया का आनंद लीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म डॉन से और जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: तो दोस्तों, देखते ही देखते आज का युववाणी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है
1: और अब समय है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए उन दो सवालों के जवाब देने का।
0: तो साथियों, आज का पहला सवाल था, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों, जिसका सही जवाब है 1930।
1: और हमारा दूसरा सवाल था कि भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था, जिसका सही उत्तर है बाबू जगजीवन राम।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में मिलेंगे कुछ नए विचारों, नई जानकारी और ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ।
1: तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट ही नहीं, सुरक्षित भी रहिए। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आपके रेडियो साथी अनमोल द्विवेदी को।
1: नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुहानी सी शाम है, धुला धुला सा आसमान है, धुली धुली सी फिजा है, भीगी भीगी सी ये शाम मुस्कुरा रही है और इन पलों में हमारा और आपका साथ संगीत के स्वरों की तरह गुनगुना उठा है। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है। वैसे दोस्तों, फिल्मी गीतों ने इंसान के हर भाव हर एहसास को शब्द दिए हैं। मोहब्बत के भी कितने रंग हैं इन गीतों में, कितनी तस्वीरें हैं मोहब्बत की इन गीतों में। यहाँ मोहब्बत कभी पुकार है, कभी आराधना है, कभी पहली नजर का जादू तो कभी मीठा सा इंतजार। हर गीत दिल की इसी अनकही भाषा का एक नया पन्ना खोलता है। तो आज की शाम इन्हीं कोमल भावनाओं और सुरीले एहसासों के साथ आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पुकार इंतजार से ही जन्म लेती है। मन की देहरी पर कोई आहट वर्षों तक दीपक बनकर जलती रहती है। जब प्रेम का नाम होठों तक नहीं आ पाता, तब आंखें ही कहा करती हैं। यही मौन पुकार किसी दिन हवा के कंधों पर बैठकर अपने प्रिय तक पहुंच जाता है।

आजा नचले, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। आवाज़ राहत फ़तेह अली खां की है, गीत लिखा है जयदीप सहनी ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

श्रोताओं, जब मन कहीं पहुंचकर ठहर जाता है तब संसार की सारी राहें उसी ओर मुड़ जाती हैं। ये लगन पाने की नहीं, खुद को खो देने की है। यहां मोहब्बत ख्वाहिश नहीं, इबादत हो जाती है और फिर हर धड़कन एक बंदगी हो जाती है।

अमजद इस्लाम अमजद का लिखा ये गीत है पाप, फिल्म का नाम है, आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की और संगीत शानी का।

मोहब्बत में आंखें जुबान से कहीं अधिक बोलती हैं, उनमें शरारत भी होती है, अपनापन भी होता है और अनकहे वादों की चमक भी। एक पल की नज़र कभी कभी उम्र भर की मुस्कान बन जाती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत परिचय शायद आंखों से ही होता है।

मोहब्बत में इंतज़ार एक बेहद खूबसूरत सा एहसास है जो आने वाले पलों के लिए कितने सपने संजोता है, कितने गीत रचता है, कितने मौसमों की महक अपने भीतर समेट लेता है। इरशाद कामिल का लिखा गीत आप सुन रहे हैं, संगीत प्रीतम का है, आवाज़ उस्ताद राशिद खान की, फिल्म का नाम जब वी मेट।

तो श्रोताओं, फिल्म गीतों में मोहब्बत की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंगतें आपने महसूस की। उम्मीद है फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 में जमीनी सीमाओं से सटे लगभग 119 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को संबोधित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज रतलाम पहुंचे, यहां से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत जो अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार नमस्कार विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ सच है तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू और ज्योति ठाकुर
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत देवेश ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेकलाल पटेल
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़ ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़ लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी अजीत जी विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है।

0: इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु संन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष ही तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
2: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
4: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
4: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
4: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे
1: हैं। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: पहुंच गया।
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा, मैं तो ब्रह्म

0: सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
0: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
2: हाँ, चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा है।
1: वाह, अरे हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
2: चलो चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
2: ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
4: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
2: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ,
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ,
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
5: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनो

0: मनोरंजन
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज है यादों की रिमझिम फुहारें। जी हाँ, और वजह है आज की तारीख 9 जुलाई। 9 जुलाई सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन है। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम उन्हें याद करेंगे और उनकी फिल्मों के गीत सुनेंगे। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर अभिनय नहीं करते हैं, वो जीवन को जीते हैं। उनके चेहरे पर भाव नहीं आते, भावनाएं उतर आती हैं। वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसे ही अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। 9 जुलाई 1938 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सिद्ध किया था कि अभिनय उम्र का नहीं, प्रतिभा का मोहताज होता है। युवा होते हुए भी उन्होंने पिता, वृद्ध, प्रेमी, पुलिस अधिकारी, किसान, कवि, साधारण इंसान, हर चरित्र को इतनी सहजता से निभाया कि वो सभी किरदार आज भी हमें अपने से लगते हैं। आज के इस विशेष फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम उन्हीं की यादों को उनके गीतों के माध्यम से सहेजेंगे। उनकी फिल्में जिनमें उनका अभिनय आज भी हमें दिखाई देता है और हम उसके मुरीद होते हैं। तो आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभिनय के इस शिखर पुरुष को याद करें।

श्रोताओं, संजीव कुमार का मूल नाम हरिभाई जरीवाला था। मूल रूप से वो गुजराती थे। गुजरात के सूरत शहर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी। शुरू में वो रंगमंच से जुड़े, आगे चलकर फिल्मालया के अभिनय स्कूल में वो शामिल हुए और इसी दौर में सन 1960 में फिल्मालया बैनर की एक फिल्म बन रही थी, हम हिंदुस्तानी। इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उनको मिली और उन्होंने अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी कि फिर आगे जो फिल्में थीं उनका एक सिलसिला ही निकल पड़ा और कभी मुड़कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। फिल्म खिलौना संजीव कुमार की अभिनय क्षमता को एक नई पहचान दे गई थी। मानसिक संघर्ष से जूझते पात्र को उन्होंने इतनी सच्चाई से और इस संवेदनशीलता के साथ निभाया था कि दर्शक भावुक उठे और इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत चर्चा हुई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सीता और गीता फिल्म का गीत। ये भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसने मनोरंजन की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया था। सीता और गीता में संजीव कुमार का जो सहज, विनोदी और सधा हुआ अभिनय था और हेमा मालिनी के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो बहुत पसंद की गई थी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत।

श्रोताओं, संजीव कुमार एक वर्सेटाइल अभिनेता थे। गंभीर भूमिकाओं में जब दर्शक उन्हें देखते तो उनके साथ वो भावनाओं में डूब जाते, कभी आंखें भीग जाती। जब वो हल्के फुल्के रोल करते या कॉमेडी करते तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते देखने वाले। रोमांटिक फिल्मों में भी वो उतने ही अच्छे थे और चुलबुले किरदार भी उतनी ही सहजता से निभाते थे। आइए सुनते हैं मंचली फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। नया दिन नई रात ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 9 किरदार निभाए थे। फिल्म कोशिश में मूक बधिर एक व्यक्ति की उन्होंने भूमिका निभाई थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और फिल्म शोले के ठाकुर को भला कोई कैसे भूल सकता है। ऐसी ही उनकी एक कालजयी फिल्म थी आंधी। गुलजार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की संवेदनशील अदाकारी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।
2: अद्भुत अभिनेता थे संजीव कुमार। संजीदा भूमिका में वो दिल की गहराइयों में उतर जाते थे और हास्य अभिनय में भी उनका कोई सानी नहीं था। फिल्म अंगूर में दोहरी भूमिका निभाते हुए उन्होंने बिना किसी बनावटीपन के दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। श्रोताओं, संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया, फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए। फिल्मफेयर ने उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया था, एक तो फिल्म आंधी थी और दूसरी अर्जुन पंडित, और इसके साथ ही फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था फिल्म शिकार के लिए। फिल्म मौसम में भी संजीव कुमार ने भावनाओं को ऐसी गहराई से अभिनीत किया कि ये फिल्म अभिनय का एक पाठ बन गई।

श्रोताओं, संजीव कुमार ने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर भूमिका को एक अलग पहचान दी। सत्यजीत रे से लेकर गुलजार और हृषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। वे उन बिरले कलाकारों में से एक थे जिन्होंने नायक की परिभाषा को ही बदल दिया था। 6 नवंबर 1985 को वो इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी अदायगी आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। चलते चलते हम यही कहेंगे कि कुछ कलाकार समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि समय उन्हें और मूल्यवान बना देता है। संजीव कुमार भी ऐसे ही कलाकार थे जिनकी मुस्कान

संवाद अदायगी और भावपूर्ण अभिनय आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने अपने दौर में थे। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में उनके जन्मदिन पर हमने उन्हें याद किया। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

0: में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज होगी डॉक्टर अपर्णा जायसवाल के साथ की गई भेंटवार्ता, कृषि में महिला उद्यमिता के विकास कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30। रात 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 आप सुनेंगे वसंत राणा डे का वायलिन वादन राग कामोद।

ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, और अब जानकारी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर सुनी जा सकती है गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10:00। दस बजकर 5 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला संसार। इसमें कल सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 आप सुनेंगे अम्बरीश कालेले का गिटार वादन राग शुद्ध सारंग। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। प्रसारण का समय रहेगा शाम 7:21। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दिन में 12:00 और 2:30। संग्रहालय से ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30। इसमें कल सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 9वीं कड़ी। दिन में 1:00 सुनिए महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र का योगदान होंगे। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है दिन में 2:00, शाम 5:33, शाम 6:30, रात 8:15 और 9:45। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00। कल रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। इसमें सुनिए मोहम्मद शोएब की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं। आपकी फरमाइश प्रसारण समय कल रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा अम्बरीश कालेले का गिटार वादन राग गावती। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में यह उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देश भर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में
0: प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का

0: भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। श्री गडकरी ने पैचवर्क का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरता है। ये राज्य के मालवा क्षेत्र के तीन प्रमुख पश्चिमी जिलों रतलाम, मंदसौर, झाबुआ को सीधे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में अन्य प्राप्त पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गुंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रुपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज संदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। सिंगरौली कलेक्टर की पहल पर अदानी फाउंडेशन बधौरा ने महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें दी हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल द्वारा 10 जुलाई को संपर्क अभियान के तहत कोलगांव में शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कवराखेड़ी में किसान प्रकाश तांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवे वही सबई बिन्ना भौजी सखी सहेलियन खा अमृता बहन की राम राम। बहनों कैसी हो आप और का हाल चाल है आप सबके। बहनों सुहावनो मौसम हो रहो है, अषाढ़ को महीना चल रहो है और थोड़े दिन में सावन भी आवे वाओ है। ऐसे सुहावने मौसम में घर में बहनों के काम चलत ही रहते हैं। मनो जब रिमझिम सी बरसात होत है और हम घर परिवार के संगे जुड़त हैं तो गरम गरम चाय पकौड़ा की बातें तो होते ही हैं और उनके बिना तो जब संजा पूरी नहीं होते कहे साची कही कि नहीं बिन्नो। और अब ढेर सारी जब आपसे बातें कर रहे हैं, ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं तो आज करें सुनेंगे आप ज़रूरी भेंटवार्ता, सुमधुर लोकगीत, संगे संगे कछु ज़रूरी घर की बातें और भी कछु चर्चाएँ हुई हैं, व्यंजन विधि सीखेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोकगीत के संग। जी ये गाँव है चित्रा देवी तिवारी ने।

0: तो बहनों लोकगीत के संगे अब आगे बढ़े और बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की, सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच तीसरो भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन भव। दो ही देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौता करे। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति को रास्ता साफ भव है, जिसे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दो ही देशों ने आर्थिक सहयोग समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देवे पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सहयोग, रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत भई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिला की काला पीपल तहसील को दौरा करो। उनने इते किसान सम्मेलन में शिरकत करी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उनने वृक्षारोपण अभियान को शुभारंभ करो। ई अभियान के तहत 400,000 पौधा लगावे को संकल्प भी लग गए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा करी। इते भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान भव हतो। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर इते काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें दो इंजनन के संगे चलाई जे है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरा पे प्रदेश में आए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिला के गरौठ स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जिते जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको स्वागत करो। करीब 110,000 करोड़ रुपया की लागत से बन रहे ई एक्सप्रेस वे हाईवे को करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होके गुजरेगो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करी। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना करी हती। करीब 5 किलोमीटर की जा परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी करी। रास्ता में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा करी। परिक्रमा 2 घंटा 10 मिनट में पूरी भई हती। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने वल्लभ भवन से मुलाकात करी। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटावे, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पे चर्चा भई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कही हती कि इन चुनौतियों से निपटवे के लाने सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्हें यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्धारण में सहयोग को आग्रह करो है। यूनिसेफ प्रतिनिधि जेस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा करी है। केंद्र सरकार ने कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत कृषकों को बड़ी मदद दी है। अब तक देश भर में कृषकों को लगभग 22 लाख कृषि मशीनें दी गई हैं। इनकी कीमत करीब 9,404 करोड़ रुपया है। जो मिशन 2014-15 में प्रारंभ भव हतो, इको मकसद खेती में मशीनों और आधुनिक तकनीकों को उपयोग बढ़ावो है। कम सुविधा वाले और उत्तर पूर्वी राज्यों पर खास ध्यान दौ जा रहा है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश भर में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचवे के लाने औचक निरीक्षण कर रहा है। 6 जुलाई को 7 दलों ने रायसेन, शिवपुरी, बुरहानपुर सहित जिलों में 34 निर्माण कार्यों को निरीक्षण करो। प्रमुख अभियंता आर एल वर्मा की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा बैठक भई। बुरहानपुर जिला में एक पुल निर्माण में गड़बड़ी मिलवे पे संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देवे के निर्देश दिए गए हैं। इतने जिला में एक सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी ठीक नहीं मिली, जी के बाद निर्माण एजेंसी को पंजीयन निलंबित करवे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बरसात को दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने भिंड जिला के लाने रेड अलर्ट जो है। उतई, मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बरसात की संभावना है। इस साल अबे तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बरसात दर्ज भई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला के चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेलो जे है। जो मैच भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे प्रारंभ हुई है। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से

0: आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लाने जो मैच जीत वो जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार को सामना करने पड़ो हो। तो बुंदेली समाचार समाप्त भय।
1: बुंदेली समाचार।
0: तो बहनों, बुंदेली समाचारन के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है और अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। सुनत है लोकगीत। जी ये गाओ है बीना ठाकुर और उनके साथी अन्य।

तो बहनों लोकगीतन के संगे आगे बढ़ रहे हैं और अब चर्चा करें कछु काम की। तो बहनों देखो, आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनावे के लाने कई कार्य करे जाते हैं और इन कार्यों द्वारा महिलाएं अपनी जो भी कार्य में रुचि है उनमें आगे बढ़त हैं। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनवे हेतु स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं जिसे उनकी आय बढ़े और उनको जीवन सुगम होए। अब देखो बहनों, ग्रामीण महिलाओं को जोड़ के एक सखी मंडल या समूह बनाओ जाते जिए हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जो समूह काम कैसे करत हैं, तो बहनों देखो इनमें जो काम होते हैं वे आप स्वयं करत हैं और इसे आपको लाभ भी मिलत है। तो कैसे, तो बहनों देखो ऐसे समूहों को आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराओ जाते हैं जिसे वे अपने कौशल विकास हेतु युवाओं तथा महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलत है। आमतौर पर 10 से 12 लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं जो समूह पंच सूत्र पे काम करते हैं। मतलब 5 ऐसी बातें हैं जिन पे जे समूह काम करते हैं और वे 5 बातें कौन सी हैं।

0: हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो सप्ताह या महीना में एक बार सभी सदस्य मिलके एक बैठक करते हैं जिसमें उस समूह के बारे में चर्चाएं होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो समूहों द्वारा जमा करी गई राशि में से थोड़ी थोड़ी राशि बचा के समूह के खाता में जमा करी जाते हैं और ई जमा करी गई राशि को कोनो जरूरतमंद या छोटे व्यवसाय हेतु कम ब्याज दर पर ऋण दो जाते हैं, जिसे कि कोई आगे यदि कोई छोटा व्यवसाय करो चाहे तो आप एक अपनी जो जमा राशि है वे उन्हें दे सकते हैं और कम लागत पे देवे से उनको भी विकास होते और आपको भी एक अच्छा ऋण मिलने लगत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप ऋण देते हैं तो ई की एक समय सीमा निर्धारित करें कि आपको ई समय तक वो ऋण लौटाने हैं और समूह के आय व्यय बचत लेन देन को भी एक आप रजिस्टर बनाएं जिसमें साफ सुथरे अक्षरों में जो सब बातें लिखी होएं कि पैसा कितने से आओ कितने गौ है की को दौ है का ब्याज दर है, तो ऐसे क्या होते एक समूह अच्छे से चलत है और सरकार द्वारा सदस्य जो भी स्वयं सहायता समूह के हैं उन्हें सिलाई डेयरी कृषि और हस्तशिल्प जैसे अन्य कार्यों हेतु ऋण भी मिलत है और संगे संगे प्रशिक्षण भी दौ जाते यदि वे इन कार्यन में आगे बढ़वो चाहते हैं, तो जो एक बहुत अच्छी बात है। बहनों आप भी इस बारे में जानकारी लें और ऐसे छोटे समूहों से जुड़ के आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहनों चर्चा तो अपनी चल रही है और आज कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को ऐसे ही जब महिलाओं की बात हो रही है महिलाएं कैसे आगे बढ़ें और खास करके कृषि में, तो सुनते हैं आज एक भेंट वार्ता जी को विषय है कृषि में महिला उद्यमिता के विकास कार्य। जानकारी दे रही हैं अपर्णा जायसवाल और उनसे भेंट कर रहे हैं मनोज सक्सेना। सुनते हैं जा भेंट वार्ता।
1: नमस्कार बहनों, अगर हम खेती किसानी की बात करें और आपके योगदान की बात करें तो बिना आपके योगदान के हम कृषि विकास की बात कर ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं ने जो योगदान दिया है कृषि में वह अभूतपूर्व है और जो मिल रहा है वह भी अभूतपूर्व है। हम इस बात को अगर प्राचीन काल से देखते चले आ रहे हैं, महिलाएं हमेशा पुरुषों के साथ खड़े होकर कृषि में उनका सहयोग करती हैं और आज तो महिलाओं ने अपना खुद का स्वयं सहायता समूह बना लिया है, खुद के अपने उद्योग स्थापित कर लिए हैं। महिलाएं स्वयं आज कृषि पर इतना काम कर रही हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो कृषि के माध्यम से सुधार देखने को मिल रहा है उसमें महिलाओं के योगदान को हमेशा सराहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में महिला उद्यमिता का योगदान, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, सहायक प्राध्यापक हैं प्रसार विभाग में कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से हमारे साथ हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि हमारा विषय है कृषि में महिला उद्यमिता का योगदान, अब हम अगर कृषि में महिला उद्यमिता के योगदान के आशय से बात करें कैसे समझाएंगे?
2: जी हाँ, कृषि में यदि हम महिला उद्यमिता की बात करें तो महिलाएं कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय को केवल जीविकोपार्जन के साधन के रूप में नहीं बल्कि आय और रोजगार सृजन करने वाले उद्यम के रूप में अपना रही हैं। जब कोई महिला कृषि से संबंधित विभिन्न उद्योगों में जैसे डेयरी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि इकाई का संचालन स्वयं करती है और न सिर्फ संचालन करती है बल्कि उससे अधिक से अधिक लाभ जो है वो भी अर्जित करती है, तब हम उसे कृषि उद्यमी कहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं कृषि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
1: वाकई आप जो बतला रही हैं कि ये सारे कामों में महिलाओं का योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर होता है, मैम महिलाओं के लिए कृषि उद्यमिता क्यों महत्व रखती है?
2: जी हाँ, जैसे भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है जहाँ महिलाओं का कृषि कार्यों में अभूतपूर्ण योगदान है। परंपरागत रूप से कृषि में खेती, पशुपालन, बीज संरक्षण, खाद निर्माण, फसल कटाई, प्रसंस्करण इत्यादि चीज़ों में जो है हमारी महिलाएं अपना सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान समय में महिलाएं केवल कृषि को श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि सफल कृषि उद्यमी के रूप में भी अपना करके अपनी एक पहचान स्थापित कर रही हैं। कृषि से महिलाएं ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही साथ अपने परिवार की आय

0: में भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं,
1: जी
0: जिससे कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी जो है मिल रहा है। आज महिलाएं आय अर्जित करती हैं तो वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी भागीदारी करती हैं, जिससे ग्रामीण गरीबी कम हो रही है, पोषण सुरक्षा जो है वो बढ़ रही है, और सतत विकास लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत ही सुंदर भूमिका निभा रही हैं।
1: वाकई हमारी यह बातचीत सुनकर हमारी बहुत सारी बहनों को ये लगता होगा कि हम भी एक अपना उद्यम स्थापित करें, आगे बढ़ें, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। मैम, महिलाएं कौन कौन से ऐसे कृषि आधारित उद्यम अपना सकती हैं?
0: कृषि में अनेक लाभकारी उद्यम हैं जिन्हें हमारी महिलाएं बड़े ही आसानी पूर्वक जो है अपना सकती हैं। इनमें प्रमुख जो है वो है डेयरी पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन। आज के समय में जैविक खेती का बड़ा प्रचलन है और प्राकृतिक खेती का बड़ा प्रचलन है, जिसे भी बड़े आसानी से हमारी जो महिलाएं हैं वो सीख सकती हैं। इसके अलावा नर्सरी प्रबंधन है, फूलों की खेती है, सब्जी उत्पादन है, फल प्रसंस्करण है, जिसमें अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश न सिर्फ बनाना बल्कि उनका प्रमाणीकरण लेना। इसके अलावा हस्तशिल्प से भी आधारित बहुत से उद्यम हैं। तो यहाँ जो है हमारी महिलाएँ जो है कम भूमि और सीमित पूंजी में भी जो है अपना उद्यम आसानी पूर्वक जो है चला सकती हैं।
1: देखिए, जब भी हम कोई उद्यम स्थापित करने की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें अर्थ की, पैसे की, और उसके लिए सरकारी योजनाओं की तरफ हमारी नज़र जाती है। तो हमारी बहनों को ये भी बताइए कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिससे कि महिलाएं अपना कर उद्यम अपना स्थापित कर सकती हैं।
0: इसमें जो है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अलावा जो है हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी जो है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स में जो है उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिला रही है, उन्हें फाइनेंस की सुविधा प्रदान कर रही है। तो हमारी महिला उद्यमी उद्यमी जो हैं वे इन सारी योजनाओं का जो है लाभ उठा सकती हैं।
1: जी वाकई, अब जैसे महिलाओं ने पूरा मन बना लिया कि हमें अपना उद्यम स्थापित करना है, अब ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो कि अगर उद्यम प्रारंभ करना चाहती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है?
0: सबसे पहले तो हमारी बहनों को अपनी रुचि और स्थानीय संसाधनों के आधार पर उपयुक्त उद्यम का चयन करना होगा। इसके बाद जो है संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। बाजार की मांग, लागत और लाभ का अध्ययन भी करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि वे अपने व्यवसाय की योजना को सही तरीके से जो है बना पाए। बैंक ऋण, सरकारी अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन जो है किस प्रकार से प्राप्त करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे व्यवस्थित रूप से इन सारी चीज़ों का जो है लाभ लेना है, ये जो है इन बातों का ख्याल जो है हमारी महिलाओं को उद्यम जो है लाने या उनके चुनाव करने के पूर्व जो है इनके बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है।
1: वाकई आज की बातचीत जो हम अपनी जो महिलाएं बहनें सुन रही हैं उनको ये लगता होगा कि ये अगर हम करते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए लाभ होगा, उनकी अपनी एक समाज में पहचान होगी, उनकी अपनी एक कह सकते हैं ना कि उनके अपने आत्मसम्मान में उनके लिए बढ़ोतरी मिलेगी। पर यहाँ एक सवाल हम सब जो है जानना चाहते हैं, हमारी बहनें भी जानना चाहती होंगी कि स्वयं सहायता समूह जो है वो महिला उद्यमियों के लिए कैसे सहायक हो सकता है?
0: जी, स्वयं सहायता समूह जो है वो हमारी महिलाओं को सर्वप्रथम तो संगठित करने में एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। समूह के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है ऋण प्राप्त कर सकती हैं। सामूहिक उत्पादन और विपणन से लागत जो है वो कम हो जाती है तथा उत्पादों के जो है बेहतर जो दाम जो है वो बाजार में जो है मिलते हैं। कई सफल महिला उद्यमी जो है वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही अपने व्यवसाय की शुरुआत कर रही हैं।
1: अच्छा मैम, ये जो शुरुआत तो कर ली, अब हमारी जो बहनें हैं कोई भी उद्यम शुरू कर रही हैं, तो जैसे आपने बताया कि कौन कौन से उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, उसके लिए अपनी रुचि और संसाधन वो सारी चीज़ें तो हैं, पर जब शुरुआत होती है तो कहते हैं ना कि हर काम जब भी शुरू किया जाता है तो दिक्कतें बहुत आती हैं। महिलाओं को ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ मिल सकती हैं जिन पर हम उनको अभी से कह सकते हैं कि इनके लिए तो आप

0: सावधान हो ही जाइए।
1: जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होती हैं जब भी हमारी बहनें जो हैं अपना उद्यम जो है वो शुरुआत करने के प्रथम चरण पर आती हैं, जिसमें सबसे पहले है पूंजी की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव, भूमि स्वामित्व से संबंधित समस्या, बाज़ार तक सीमित पहुँच, और इन सबसे परे जो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है वो हमारे यहाँ की जो सामाजिक बाधाएँ हैं। तो इनके बारे में जो है हमारी महिलाओं को जो है सोचना होगा, इनका डट करके सामना करना होगा। और इसके अलावा जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को जो है हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो व्यवसाय को वो पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और सामाजिक सहयोग की जो है आवश्यकता होती है।
0: हाँ मैम, देखिए ये तकनीक का युग है और इस युग में कहते हैं डिजिटल तकनीक जो है अब अपनाई जा रही है, और इस डिजिटल तकनीक से अगर महिला जुड़ती है तो किस प्रकार इसके लिए यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है?
1: आज के समय में डिजिटल तकनीक कृषि उद्यमिता को नई ऊंचाइयों तक जो है पहुंचा रहा है, जैसे कि मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से महिलाएं बाज़ार भाव की जानकारी प्राप्त कर रही हैं, ग्राहकों से सीधे जुड़ रही हैं, अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है करप्शन या बीच में जो काला बाजारी जो है उसका जो है डट कर जो है सामना कर रही हैं, डिजिटल तकनीक के समय और लागत दोनों की ही बचत हो रही है।
0: क्या बात है मैम, हमारे पूरे देश में हर ज़िले में लगभग हर ज़िले में ही मैं समझता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करे गए हैं जो किसानों के लिए कृषि में सहायता प्रदान करते हैं, सलाह प्रदान करते हैं। महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, वे अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र की इसमें कितनी महती भूमिका हो सकती है?
1: कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यहाँ प्रदर्शन, कार्यशालाएं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा तकनीकी परामर्श जो है वो उपलब्ध होता है। कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करना, प्रसंस्करण की विभिन्न विधियाँ और विपणन की जानकारी जो है दे करके उन्हें सफल उद्यमी बनाने में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
0: क्या बात है, वाकई हम आज की जो बातचीत अपनी बहनों को सुनवा रहे हैं, हमारी जो बहनें सुन रही हैं इस कार्यक्रम को, इस बातचीत को, उनके मन में यह जिज्ञासा ज़रूर आएगी कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ अलग जीवन में हम अपना पा सकें सफलताओं को। आखिर में हमारी उन बहनों के लिए आपका क्या संदेश है?
1: मेरा संदेश है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, समूहों से जुड़ें और आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन से हर महिला सफल उद्यमी बन सकती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारी ग्रामीण महिलाएँ जो है, बहनें हैं, वो कृषि उद्यमिता को अपनाकर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी, मैं कुछ चार पंक्तियों के द्वारा जो है उनका उत्साहवर्धन करना चाहूँगी। नारी शक्ति का हो सम्मान, कृषि उद्यम बने उसकी पहचान, आत्मनिर्भर गांव का यही आधार, महिला उद्यमी करे देश का उद्धार।
0: क्या बात है, महिला उद्यमी करे देश का उद्धार। बहनों, आप इस देश की शक्ति हैं और महिला शक्ति को सब प्रणाम करते हैं, उसकी शक्ति और उसकी ऊर्जा को सब जानते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हम सबका आत्मबल बढ़ाती हैं। और मैं समझता हूं कि अगर महिलाएं पूरी तरह से कृषि और उद्यम में अगर आ जाएंगी तो और भी ज़्यादा सशक्त तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना पाएंगे। बहनों, आप भी ऐसा मन बनाइए कि हम यह सब करें और खूब आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और समृद्ध बने। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस बातचीत को यहीं विराम दे रहा हूं। नमस्कार।
2: तो बहनों, कृषि में महिला उद्यमिता के विकास कार्य विषय पे अपर्णा जायसवाल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी जो हमने अभी सुनी, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हैं। सुनत है लोकगीत, जिए गाँव है उर्मिला पांडे ने।

तो बहनों, लोकगीत के संगे अब आगे बढ़े और बहनों अब हम चर्चा करेंगे हमारे स्वास्थ्य की, मतलब कि आज हम बात करेंगे अपने आहार की। तो बहनों, आहार कैसे होने चाहिए? जी, हम आप लोगों को बताते हैं कि संतुलित आहार होने चाहिए। अब आप कहेंगी संतुलित आहार कैसो? तो ऐसो भोजन जिसे शरीर के लाने ज़रूरी सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर सहित अन्य उचित मात्रा की जो भी पोषक तत्व हैं वे हमें सही अनुपात में मिलें तो वो एक संतुलित आहार होते हैं। ऐसो आहार शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं और आंतरिक शक्ति भी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिसे कि हम रोगन से लड़वे के लाने हमारा शरीर सजग रहते है। आज बड़े बड़े आहार विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं स्वस्थ भोजन की थाली हेतु कई सुझाव देते हैं और हम तो जो ही कहेंगे कि आपकी थाली में 40% हिस्सा फल और सब्जियों को होने चाहिए, तो 25% हिस्सा साबुत अनाज जैसी जी हम मोटे अनाज कहते हैं उनको होने चाहिए, 25% हिस्सा में हमें प्रोटीन रखने हैं और संगे संगे 10% हिस्सा हमें वसा को होने चाहिए, तो जो एक संतुलित आहार कहलाता है। जब हम बात संतुलित आहार की कर रहे हैं तो आज संतुलित व्यंजन आप लोगों से बता रहे हैं और जो व्यंजन बहुत ही अच्छा है आप घर में अवश्य बनाएं। आज हमारी जो व्यंजन है उसको नाम है मिलेट्स के चीला। तो बहनों देखो, इक्के लाने बहुत सामान्य हैं, जितने भी मोटे अनाज आपके घर में उपलब्ध हों, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ओट्स, कोदो, कुटकी, इन सब चीज़ों को आप रात में भिगो दें और 2-5 घंटा भिगोवे के बाद आप ये अच्छे से पीस लें, अपनी मनपसंद की या बच्चों की पसंद की जो भी सब्जियां हैं बारीक बारीकी में डालें, संगे संगे हरी मिर्च, धनिया, नमक और अपने स्वाद अनुसार मसाले डाल के आप इके चीला बना सकते हैं। शुद्ध घी में चीला बनाएं तो ये अधिक पौष्टिक हो जाते हैं और दही के साथ यदि ये खाएं तो इसे इसकी पोषण गुणवत्ता बढ़त है। तो बहनों, आप ये बनाएं और हमें बताएं कि जो व्यंजन विधि आप लोगों को कैसी लगी। तो चर्चा अपनी चलत रहे है, मानो अभी सुनते हैं लोकगीत जी, ये गाँव है ममता गोस्वामी ने।

सो बहनों, अब आप लोगों से कह रहे हैं कछु ज़रूरी कामकाजी बातें। तो बहनों देखो, बरसात में सब्जियों को कपड़ा में रख के आप फ्रिज में रखें तो जी सड़त नहीं है और ज़्यादा दिन तक चलत है। और संगे संगे यदि घर में दही रखो है और वो खट्टो हो जाए तो इसमें आप पानी डाल दें और थोड़ी देर के लागे स्थिर रख दें। थोड़ी देर में जब जो पानी अलग हो जाएगा और ये पानी को आप निकाल दें तो आप देखें कि दही की खटास कम हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से हम अपनी रसोई के काम आसान बनाते हैं और नई नई जानकारी भी आप लोगों का देते रहें। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत मनो अबे हो गई है चलवे की बिरिया। आशा है आप सबको कार्यक्रम अवश्य पसंद आ हुई है। ये चलती बिरिया आप सबको अमृता बहन की राम राम।

आकाशवाणी भोपाल से अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो LPG, LNG या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए, और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए, ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे LPG हो, काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइन होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
3: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
2: मेरे

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा।

0: विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लॉयट करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात, इसमें ये देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए हम सिविलियन यूजेस के लिए, ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
0: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और एलपीजी वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो एक्टा से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं।

0: इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी सीईओ फोरम में अनाउंस किया दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर, मतलब करीब 350 मिलियन यूएस डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए एमओयू के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जॉइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते अम्बेसडर सज्जनहार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी एमओयू, जितने भी आज समझौते हुए हैं, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि एमएससीआर को भी देखा गया है। तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है। इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहाँ पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है, जो आपने कहा, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पे चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: सुर्खियों में
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं नमस्कार, बारिश का उत्सव है, गुनगुनाते हुए हम और आप हैं, और इस गुनगुनाहट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।

श्रोताओं, बारिश के दिन बादल ओढ़े हुए जागते हैं, सफ़ेद उजालों वाली सुबहें होती हैं और काले घने मेघों को ओढ़ी रात होती है, जहां जिंदगी भीगे मन आंगन में सपने बोती है। आसमान के प्यार से धुल गया है धरती का सारा इंतजार। कितना खूबसूरत सा मौसम है बारिश, जैसे जमीन से आसमान का एक रिश्ता बंधा हुआ है। बारिश का ये मौसम जैसे कोई जादू है। ये रिमझिम रात भर बादलों का वृत्तांत कहती हैं और जमीन चुपचाप सुनती है, भीगती है। सुबह सवेरे हमारी खिड़की की कांच पर इन बूंदों की कविताएं मिलती हैं और दिन जैसे कोई गीत हो जाता है। धुली हुई हवाएं हैं, धुली हुई फिजाएं हैं और चारों ओर हरियाली है। ये हरियाली नहीं, आसमान के नाम धरती के प्रेम पत्र हैं और ये प्रेम ही जीवन है।

बारिश एक मौसम जहाँ प्रेम है, स्वर है, संगीत है। बारिश एक मौसम जिसमें सब हरा होता है, धरती का आंचल, किसानों के सपने और हमारे मन। इस हरा होने से ही जीवन भरा है। बारिश एक ऐसा मौसम जो बाहर बरसता है और हमारे भीतर उतरता है। बारिश एक मौसम जिसे हम देख तो सकते ही हैं, छू भी सकते हैं, सहेज भी सकते हैं। तो इस बरस बारिशें जमा कीजिएगा। फिलहाल आपके साथ मिलकर गुनगुनाते हैं इस सुहाने से मौसम को, बरखा बहार को।

मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, बादलों के दरख्त मेरे आंगन में फूलने लगे हैं।

मौसम से मन की जुगलबंदी बड़ी पुरानी है। इधर आसमान में बादल घिरते हैं, उधर मन उड़ चलता है प्रेम के देश। इधर बूंदें बरसती हैं, उधर मन भीग भीग गाता है पावस के गीत।

ये बूंदें जो हथेलियों को सहलाकर भिगो देती हैं, जैसे मन को कोई बीती हुई याद सहला जाती है। धरती के आंगन में जब बजता है जल तरंग, एक टीस मीठी सी गुनगुनाती है।

श्रोताओं, ये उमड़ते घुमड़ते बादल जैसे ढोल बजाते हों कि हाँ शुभ दिन आ गए। ये धरती जैसे दुल्हन है इन दिनों, हवाएं शहनाई बजाती हैं कि नए सपनों का शुभारंभ है ये, कि जैसे ये उत्सव है धरती और आसमान के अटूट बंधन का।

श्रोताओं, यूं मौसम कोई भी आवाज नहीं होता, लेकिन बारिश के स्वर बहुत मुखर हैं। गरजते बादल, रिमझिम फुहारे, दादुर मोर, पपीहे के स्वर, ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर मल्हारी वृंदगान रच रहे हों। इन घटाओं से एक अजीब सा रिश्ता है मन का। ये काली घटाएं कभी संदेशवाहक हो जाती हैं, ये मेघ दूत बन जाते हैं और बेकल मन का हाल कह सुनाते हैं। एक साझे आसमान पर दूर दूर जीती दो निगाहें क्या क्या लिखती हैं, क्या क्या पढ़ती हैं।

तो श्रोताओं, बारिश एक संबंध है जमीन का आसमान से, बारिश एक संबंध है जीव का जीवन से, बारिश एक संबंध है मन का दूसरे मन से। इस संबंध को गुनगुनाते रहना ही इसे जिंदा रखना है। तो इस बरस आइए, बारिश को खूब जिएं, इसे गुनगुनाएं, उसे छुएं, इसे सहेजें, हम जमा करें बारिशें, हम बारिशें बोएं, कि बादलों के दरख्त फूलते रहें, धरती के आंगन में जीवन हमेशा खिलता रहे, महकता रहे। इसी वादे के साथ अब इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन

0: अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है, मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता

0: के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
2: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: भुवनेश्वर।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट

0: विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more. Addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting

ऐसे ही अप्रतिम सिने शिल्पी थे गुरुदत्त, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कला के अद्वितीय साधक। उन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं, सौंदर्य और विचारों का शाश्वत दस्तावेज बना दिया। आज उनके जन्मदिन पर आइए उनके सृजन संसार में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

श्रोताओं, 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का जीवन संघर्षों की धूप में तपकर निखरा। कोलकाता से मुंबई तक का उनका सफर केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि कला के प्रति अदम्य समर्पण का इतिहास है। नृत्य से आरंभ हुई उनकी साधना बहुत जल्द अभिनय और निर्देशन तक पहुंची और फिल्मबाजी ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसे निर्देशक से परिचित कराया जिसकी दृष्टि समय से बहुत आगे की थी।

श्रोताओं, गुरुदत्त कैमरे के नहीं भावनाओं के निर्देशक थे। प्रकाश और छाया का उनका प्रयोग आज भी विश्व भर के फिल्म विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। उनका हर फ्रेम किसी चित्रकार की तूलिका का स्पर्श लिए दिखाई देता है और हर दृश्य कविता की तरह मन में उतर जाता है। अभिनेता के रूप में गुरुदत्त ने कभी अभिनय का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने पात्रों को आत्मसात किया। उनकी आंखों की खामोशी कई बार लंबे संवादों से कहीं अधिक प्रभाव छोड़ जाती थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया, अभिनय किया और कई बार अबरार अलवी के साथ फिल्में लिखी भी। जो भी काम उन्होंने किया वो बेमिसाल रहा।

श्रोताओं, एक निर्माता के रूप में गुरुदत्त जोखिम उठाने से कभी भी हिचकिचाए नहीं। वो नई प्रतिभाओं पर विश्वास करते थे, श्रेष्ठ लेखन, संगीत और अभिनय को हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनकी फिल्मों में लोकप्रियता और गुणवत्ता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। मिस्टर एंड मिसेस 55 इसी दृष्टि का एक अच्छा उदाहरण है।

श्रोताओं, गुरुदत्त के सृजन संसार में अगर हम प्रवेश करते हैं तो आर पार मिस्टर एंड मिसेस 55, काला बाजार, चौदहवीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम, भरोसा, सुहागन, जाल, बाजी बाज, सौतेला भाई, ऐसी कई फिल्में हमें नजर आती हैं। लेकिन दो फिल्मों के जिक्र के बगैर उनके सृजन की बात पूरी नहीं हो सकती है, और वो फिल्में हैं प्यासा और कागज़ के फूल। प्यासा केवल एक फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा की आत्मा मानी जाती है। 1957 में प्रदर्शित इस कृति ने समाज, संवेदनाओं और एक कलाकार की पीड़ा को जिस गहराई से अभिव्यक्त किया, उसने विश्व सिनेमा को भी चकित कर दिया। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक और फिल्म संस्थान इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान देते हैं।

प्यासा की तरह ही अनमोल कृति है कागज के फूल। कागज के फूल उस कलाकार की कहानी है जो अपनी ही रचना के भीतर अकेला पड़ जाता है। अपने समय में ये फिल्म व्यावसायिक सफलता नहीं पा सकी थी, लेकिन समय ने इसके मूल्य को पहचाना। आज इसे विश्व सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और प्रकाश छाया का प्रयोग आज भी फिल्म निर्माण की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है।

श्रोताओं, गुरुदत्त का विश्वास था कि सिनेमा तभी महान बनता है जब हर कलाकार को अपनी प्रतिभा के साथ खिलने का अवसर मिले। एक निर्माता के रूप में उन्होंने अनेक नई प्रतिभाओं को मंच दिया और ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो लोकप्रिय होने के साथ साथ कलात्मक भी थीं। उनकी इसी दृष्टि ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दीं।

श्रोताओं, गुरुदत्त की कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म और थी साहेब बीबी और गुलाम। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। इस फिल्म को फिल्मफेयर अवार्ड्स में व्यापक सम्मान मिला और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया। गुरुदत्त स्वयं अपने जीवन काल में जितने सम्मान के अधिकारी थे, उससे कहीं अधिक सम्मान उनकी कृतियों को समय ने दिया। और सच तो यह है कि यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

श्रोताओं, गुरुदत्त केवल एक नाम नहीं, भारतीय सिनेमा की संवेदना है। उन्हें मरणोपरांत वो प्रतिष्ठा मिली जो बिरले कलाकारों के हिस्से आती है। उनकी फिल्मों को विश्व के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों, अभिलेखागारों और फिल्म विद्यालयों में अध्ययन की सामग्री के रूप में देखा गया। सन 2010 में विश्व की श्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनाई गई, जिसमें प्यासा को विशेष स्थान मिला। कागज़ के फूल को भी विश्व सिनेमा की महान कृतियों में शामिल किया गया। ये सम्मान केवल एक फिल्मकार का नहीं, भारतीय सिनेमा की सृजनात्मक चेतना का सम्मान है। आइए, कार्यक्रम के अंत में आपको चौदहवीं का चांद, इस फिल्म का वो अमर गीत सुनवाते हैं जिसकी मिठास आज भी हर दिल में चांदनी की तरह उतर जाती है।

ये सम्मान केवल एक फिल्मकार का नहीं, भारतीय सिनेमा की सृजनात्मक चेतना का सम्मान है। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको चौदहवीं का चांद, इस फिल्म का वो अमर गीत सुनवाते हैं जिसकी मिठास आज भी हर दिल में चांदनी की तरह उतर जाती है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

फरमाइशी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ढलती हुई रात है और हम और आप साथ हैं। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे खत। इन खतों में हैं आपकी पसंद, आपकी फरमाइश। इन फरमाइशों के साथ आधे घंटे का एक सफर हम सजाने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है खानदान, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल नक्श लालपुरी के हैं और धुन खयाम की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावींद्र कुमार वर्मा।

पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं। मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये चिट्ठी आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में खानदान फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है।

सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रामाणिक तथा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई और अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं खय्याम। अनुरोध आप सबका है। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश, गुड़िया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है ग्राम आमा खोडरा, पोस्ट रेंगाखार, जिला कबीरधाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्ष, प्रिया नेताम। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश। और मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल।

हसरतों से भरे दिल रोक लेना चाहते हैं वक्त को, लेकिन वक्त भला कब रुका है रोके से। वक्त चलता है, सपने पलते हैं और जिंदगी जिंदगी को बुलाती है अपने घर। आइए एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं, सुदर्शन फाकिर का लिखा हुआ। जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है दूरियां और आवाजें भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की हैं। पसंद आप सबकी है। सौगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र। नागर कोहरा से झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंत और सन्मति पंचोलिया। और तिल्दा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं, प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया ओशीम और सोमेन कुमार चंद्र।

जिंदगी की आमद जिंदगी में, और जैसे वक्त को पर लग जाते हैं, जहां मुलाकातें हैं, बातें हैं, साथ है, सपने हैं, लेकिन मन है कि भरता ही नहीं। जमीं चांद सी है, बातें फूलों सी, जिंदगी कोई गीत मोहब्बत का। एक ऐसा ही गीत अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ तलत अजीज की है, उमराव जान फिल्म का नाम है, शहरयार इसके लिखने वाले हैं और धुन खय्याम की। पसंद आप सबकी है। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन और वंशिका। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ शर्मा। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची। और ये खत हैं धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना का। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव का।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर ये थे कुछ फिल्मी गीत। यूं ही चिट्ठियां लिखते रहिए, अपनी फरमाइशें हम तक भेजते रहिए और हम आप तक भेजते रहेंगे आपकी पसंद के नगमे। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

ये था फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण राग रजनी। इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की है पंडित रामस्वरूप रतौनिया ने।

0: राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की थी पंडित राम स्वरूप रतौनिया ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights driven by shared values.